0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576।
2: जी हा 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

मोकिलण जो नालो जो तरीक़ो तमामु आसान आहे. मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, उते एल आर के लिखी ऐं स्पेस ॾींदो. उते पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो, ईद मुबारक लिखी करे तव्हां असांजे सेंड कंदव. 888 ते तव्हां असांजे मोकिले सघो था. ऐं तव्हां असांजे फेसबुक जे आई डी ते बि, GFM88 जेका आई डी आहे फेसबुक जी, तव्हां उन ते बि पंहिंजा नाला मोकिले सघो था. ऐं तव्हां पंहिंजो असांजे नाला मोकिले सघो था. असांजो स्टूडियो जो नंबर आहे, असांजे ऑफिस जो नंबर आहे 0332132288 ते बि तव्हां पंहिंजा नाला मोकिले सघो था. ऐं साईं जा ऐं तव्हांजा असां नाला बिल्कुलु खणंदासीं. को बि सवाल कोन्हे को तव्हां असां 3 ॾींहनि जूं ईद जूं ख़ुशियूं आहिनि, उन ख़ुशियुनि में तव्हांखे असां गॾु गॾु रखंदासीं. ऐं साईं जा कुझु नाला आहिनि अवां ताईं पहुचाईंदासीं. मोहले मुरादवण लाड़काणे खां इम्तियाज़ अली कुंभर ऐं दीदार अली जतोई, ऐं ॻोठु ओभायो ख़ासि केली लॻे जामरी चौक खां ग़ुलाम नबी ख़ासि केली, अहमद नवाज़ ख़ासि केली, सिराज अहमद अली अहमद ऐं ग़ुलाम रसूल गुल ख़ासि केली, इहे बि पंहिंजे मिटनि माइटनि दोस्तनि खे ईद मुबारक हुजनि था. हुनजी वॾी महिरबानी. ऐं समिन अवां बि असांजे ईद मुबारकूं मोकिले सघो था. असांजो नंबर आहे 0332132288. साईं मुंहिंजा प्यार ते पहरा, प्यार ते पाबंदियूं, सख़्तियूं ऐं बंदिशूं सदियुनि खां प्यार सां ईअं गॾो गॾु रहियूं आहिनि, जीअं गुलनि सां गॾु कंडा. हक़ीक़त में इहे ॻाल्हियूं प्यार जे मरहले में तमामु घणियूं तकलीफ़ ॾियनि थियूं ऐं ॾाढी इज़त बि ॾियनि थियूं, पर हक़ीक़त में उहे पहिरां पाबंदियूं, सख़्तियूं ऐं बंदिशूं प्यार जे रिश्ते ऐं नीह जे नाते खे तमामु घणो मज़बूत कनि थियूं, बाहिमत कनि थियूं. ऐं इहो सभु कुझु हूंदे बि अगरि प्यार सचो आहे त हासिलात यकीनी आहे. मिलण लाइ त अॻे पोइ सिर्फ़ प्यार कंदड़ खे ई नसीब में कुझु मिलंदो आहे ऐं प्यार जे मुहाफ़िज़नि खे कुझु बि नाहे मिलंदो. साईं मुंहिंजा प्यार कयो ऐं पंहिंजे महबूबनि सां, पंहिंजे प्यारनि सां जेको आहे सो प्यार कंदो त अव्हां सां गॾु ईदूं बि थी थियूं ऐं ईद जो ख़ुशि नगमो अव्हां दोस्तनि जे नाम.

जी असांजा प्रोग्राम ईद जो रोशन सभु वहां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां ऐं मां जो मेज़बान नेमत अलाह जुणे जो त साईं मुंहिंजा अव्हां खे कुझु यादगीर जाराईंदो हलां त अव्हां खे केरु सारे थो अव्हां खे केरु यादि करे थो त कोशिश कयो त उन्हनि माण्हुनि खे सारियो उन्हनि माण्हुनि खे अव्हां यादि कयो त साईं मुंहिंजा अव्हां खे ईद जे ॾियारनि में या आम ॾियारनि में तव्हां खे केरु यादि कंदो आहे केरु अव्हां खे सारींदो आहे त उहो हिकिड़ो हूंदो आहे कैदी जेको जेल में बंदि हूंदो आहे कैदी हूंदो आहे उहो बि हमेशह पियो सारींदो आहे पियो यादि कंदो आहे त जेकर मूंसां को मिलण लाइ अचे ऐं मुंहिंजी मुलाक़ात करे तमामु हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो अहसासु आहे वॾो हिकिड़ो यादगीरो आहे ऐं अव्हां खे मां गुज़ारिश कंदुमि त अहिड़नि माण्हुनि सां अव्हां ज़रूरु मिलो उन सां ज़रूरु मुलाक़ात कयो जेकी क़ैद में कैदी आहिनि ऐं साईं मुंहिंजा उहो माण्हू बि निहारे थो उहो निहारींदो आहे हिकिड़ो बीमार जेको बिस्तरे ते पियो हूंदो आहे जेको हॉस्पिटल जे कंहिं बेड ते बीमार पियो हूंदो आहे उहो बि सारींदो आहे त जेकर को मूंखां तबियत पुछण अचे जेका जेको मूंखां को हाल पुछण अचे त साईं मुंहिंजा अहिड़नि बीमार मरीज़नि खां अव्हां ज़रूरु पुछो उन ॾे भेरो न भञो उन ॾे ज़रूरु वञो ऐं असां उन्हनि प्यारनि ॾे बि ज़रूरु वञूं मुक़ाम ते बि ज़रूरु वञूं उन लाइ दुआऊं कुल ज़रूरु पढ़ूं जिन खे सवाबु मिलंदो ऐं हमेशह उन्हनि खे न विसारियूं जेके असां खां विसरी चुका आहिनि अहिड़ियूं असां ग़लतियूं न कयूं छो त इहो हिकिड़ो मकाफ़ात अमल आहे जेकॾहिं असां पंहिंजे उन्हनि वॾड़नि खे विसारींदासीं त ज़रूरु असांखे बि पोयां विसारींदा असां ॾे बि कोई न ईंदो त साईं मुंहिंजा अहिड़े नमूने सां असां कंहिंखे न विसारियूं असांखे वरी केरु यादि कंदा आहिनि असां ॾे यादि कंदियूं आहिनि असांजूं पंहिंजूं नियाणियूं असांजी भेण असांजी धीउ असांजी पुफी असांजी मासी जेका नियाणीअ में अची वञे थी उहा बि असां ॾे निहारींदी आहे त जेकर को मूं ॾे मिलण अचे मूंखे पंहिंजो वठण अचे ऐं मूंखे को ख़र्ची ॾियण अचे ऐं जेकॾहिं अॻिले वटि कुझु बि न आहे त हुन खे शफ़क़त जो हथु नियाणीअ ते ज़रूरु रखे ऐं हुन खे पंहिंजे घर ॾे ज़रूरु वठी वञे त अहिड़े क़िस्म जो इंतज़ारु हिकड़ी नियाणी कंदी आहे अचो त फ़ैज़ अली आवाज़ में गॾिजी पिया ॿुधूं।

ट्रंप जो आहे त रेल लाइन खां पोइ ते न हटंदासीं, ईरान खे यूरेनियम रिचाव जो हक़ हासिल आहे, पाबंदियुनि में नरमी जो मुतालबो जाइज़ आहे। ईरानी क़ौमी सलामती काउंसिल जे नायब सेक्रेटरी अली बाकरी जो चवणु आहे त यूरेनियम ज़खीरे जो मामिलो अमरीका सां हलंदड़ ॻाल्हियुनि में शामिल नाहे। आबनाए हुरमुज़ खोलण बाबति अञा ताईं अमरीका सां इतफ़ाक़ नाहे थियो। अमरीकी फ़ौज ईरान जे बहरी नाकाबंदी ख़तम कंदी। जवाब में ईरान हिकु महीने अंदर आबनाए हुरमुज़ में वापारी जहाज़नि जी आमदो रफ़्त बहाल कंदो। उन्हनि में फ़ौजी जहाज़ शामिल न हूंदा। ओमान जे सहकार सां आबनाए हुरमुज़ में जहाज़नि जी अचवञ ऐं रूट जो इंतज़ाम ईरान कंदो। ईरानी सरकारी मीडिया ईरान ऐं अमरीका विच में इम्कानी मफ़ामती याददाश्त जा तफ़सील साम्हूं आणे छॾिया। ईरानी मीडिया मूजिब इस्लामाबाद मेमोरेंडम फ्रेमवर्क फ़िलहाल हतमी नाहे। पकी तस्दीक खां सवाइ ईरान को बि कदम न खणंदो। व्हाइट हाउस इम्कानी मफ़ामती याददाश्त बाबति ईरानी मीडिया जी रिपोर्ट रद्द करे छॾी। व्हाइट हाउस जो चवणु आहे त ईरानी मीडिया पारां जारी कयल MOU कूड़ ते ॿधल आहे। योम तकबीर जे 28 सालगिरह हथियारबंद फ़ौजनि जे सरबराहनि जी क़ौम खे मुबारकबाद। ISPR मौजूद फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर, एयर चीफ ऐं नेवल चीफ क़ौम खे मुबारकबाद पेश कई। योम तकबीर तारीख़ी कारनामा यादि ॾियारे थो जड॒हिं पाकिस्तान एटमी ताक़त बणिजी उभरियो। हिन ॾींहं ते पाकिस्तान जो ॾखण एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल थियो। ही कामयाबी पाकिस्तानी क़ौम ऐं पाक फ़ौज जी क़ुर्बानी जो समर आहे। पाक फ़ौज मुल्क जी सलामती खुशहाली ऐं इस्तेहकाम लाइ पुरअज़्म आहे। पाकिस्तान जे दिफ़ाई स्ट्रेटेजिक सलाहियत मुक़दस क़ौमी अमानत आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त 28 मई 1998 में चाघी जे पहाड़नि ते कामयाब एटमी धमाका करे स्ट्रेटेजिक ख़ुदमुख़्तियारी ऐं दिफ़ाई तवाज़ुन हासिल कयो। असां मुस्तक़बिल जे चैलेंजेस खां आगाह आहियूं ऐं मुंहुं ॾियण जी सलाहियत रखूं था। सदर आसिफ अली ज़रदारी जारी कयल पैगाम में चयो आहे त बुनियादुल महसूस ऑपरेशन में भारतीय जारीअ जो मुंहुं तोड़ जवाब ॾिनो। पाकिस्तान कंहिंजी बि ख़िलाफ़ जारीअ जो इरादो नथो रखे। असां ज़िमेवार ऐं अमन पसंद क़ौम आहियूं। योम तकबीर जे मौक़े ते अहद कयूं था त का बि क़ुर्बानी ॾियण लाइ तयार आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो चवणु आहे त योम तकबीर पाकिस्तानी तारीख़ जो अज़ीम ऐं फ़ैसिलाइतो ॾींहुं आहे। पाकिस्तान साबित कयो त असां दिफ़ाई सलाहियत रखूं था। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, नवाज़ शरीफ, डॉक्टर क़दीर ऐं डॉक्टर समर मुबारक खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान जो फोन ते राब्तो। ईरानी सदर पारां ख़िते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जे किरदार जी बाखाण। वज़ीर आज़म आफ़ीफ मौजूद ॿिन्ही अॻवाणनि में अधु कलाक ॻाल्हि ॿोल जारी रही। ॿिन्ही अॻवाणनि हिक ॿिए खे ईद उल अज़हा जी मुबारकबाद पेश कई। ईरानी सदर चयो त अमन जे क़याम लाइ कोशिशनि ते पाकिस्तान जा शुक्रगुज़ार आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर जो अमन जे क़याम लाइ अहम किरदार आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो चवण हो त उमीद आहे त ईरान ऐं अमरीका विच में जल्द अमन मुआहिदो थी वेंदो। PM आफ़िस मौजिब ॿिन्ही अॻवाणनि गॾु राब्ता ऐं मुशावरत जारी रखण ते बि इतफ़ाक़ कयो। नायब वज़ीर आज़म जी न्यूयॉर्क में मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे परे वज़ीरनि सां मुलाक़ात। इसाकदार UN सलामती काउंसिल जे ओपन ब्रीफिंग सेशन जे मौक़े ते बहरीन जे परॾेही वज़ीरनि सां मुलाक़ात कई। परॾेही तर्जुमान मूजिब मुलाक़ातनि दौरान भाइराणा लाॻापा वधीक मज़बूत बणाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो।

पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी सां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो राब्तो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी के ईद मुबारक डई। बिलाल भुट्टो जरदारी ए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विच में मुख्तलिफ मामलों ते गालियों थियो। पीपी चेयरमैन ईद मुबारक डेण ते वज़ीर आज़म जो शुक्रियो अदा कयो। न कें सूबे की गाल थी ए न ही वरी कें शहर के धार करण की गाल थी है। 28 तरमीम जो गालियों रुगो मीडिया ते बुधियो आन। पीपुल्स पार्टी के राज़बे खां सिवाय असेंबली मां का भी तरमीम पास नथी थी सके। वडे वजीर मुराद अली शाह जी अबाणे गोठ बाहौड़ में मीडिया सां गालियों। मुराद अली शाह चयो तो मौजूदा हालतन सबब ही बजट तमाम घणी दुखी हुंदी। मुलाज़िमन जे पघारन में केतरी वाद कजे फैसलो वफाक सां गालाए कंदासीं। कोशिश आए तो गरीब अवाम ते बार घट पवे। पटड़ी रेलवे स्टेशन ते मालगाड़ी जा पंज गाड़ा पटड़ी तां लही विया। रेलगाड़ी जी अच वञ मौतल। पंजाब खां कराची ईंदड़ माल बरदार गाड़ी जे पंज गाड़ा पटड़ी तां लही विया। ट्रैक सख्त मुतासिर। रेलवे अमलदारनि जो चवण आहे त ट्रैक जी मरम्मत जो कम जारी आहे। बहाली में 4 खां 5 कलाक लॻी सघनि था।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़, जीएफएम 90.4।

0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli glow har diya josho.
2: इस ईद पर बहुत सोचा, कौन सा तोहफा तुम्हारी नजर करूं, कुछ सोच के हाथ बुलंद किए, बहुत सी दुआओं के फूल तुम्हारी नजर किए। हाय डियर लिसनर्स, मैं हूं आपका आरजे अमीर बख्श। मेरी जानिब से ईद उल अजहा इस ईद पर बहुत सोचा, कौन सा तोहफा तुम्हारी नजर करूं, कुछ सोच के हाथ बुलंद किए, बहुत सी दुआओं के फूल तुम्हारी नजर किए। हाय डियर लिसनर्स, मैं हूं आपका आरजे अमीर बख्श। मेरी जानिब से ईद उल अजहा के पुरमसरत मौके पर आप लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं।

जी समय वापसि चुका आहियूं प्रोग्राम ईद जे रोशन सुबुह में ऐं तव्हां सां गॾु आहियूं तव्हां जे ईद मुबारकनि में तव्हां जे ख़ुशियुनि में तव्हां जे ग़मनि में तव्हां सां गॾु आहियूं। प्रोग्राम आहे ईद जो रोशन सुबुह, प्रोग्राम ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां। ऐं समय तव्हां जे प्रोग्राम जे यानि नालनि लिखण जो ओसियड़ो आहे, तव्हां असां ॾे इनबॉक्स में मैसेज करे सघो था, फेसबुक ते बि करे सघो था। ऐं असांजे स्टूडियो जो नंबर आन आहे 0332132288। तव्हां कॉल करे पंहिंजा नाला लिखाए ईद जे ख़ुशियुनि में शामिल थी सघो था। ऐं साईं मुंहिंजा वरी ॻाल्हि कंदासीं तव्हां सां त जंहिंजी कंहिं सां बि त दिल अटकी हूंदी ज़रूर, ऐं जंहिं कंहिं सां बि प्यार कयो हूंदो उन खे प्यार ऐं दिलगी जो कहिड़ो अहसास हूंदो, जंहिं प्यार न कयो हूंदो उन खे कहिड़ो अहसास हूंदो। अहिड़ो माण्हू प्यार जे अहसास ऐं प्यार जी क़दुरु ऐं प्यार जे पेड़ा खां बेख़बर बेवाकुफ़ हूंदो आहे, ऐं इहा ई बेख़बरी कंहिंजे जीवन खे बि नुक़सान पहुचाए सघे थी। ऐं जेसीं ताईं हुन जी बि दिलि किथे अटके ऐं हुन खे प्यार जे अहसास जो बि पतो पवे, तेसीं ताईं कंहिंखे कहिड़ी ख़बर त उन ई इंतज़ार में केरु केतिरो रहंदो ऐं केतिरा ॾींहं जीअंदो। बहरहाल प्यार जी ख़बर उन खां पुछो जंहिंजी दिलि किथे अटकियल हूंदी आहे, ऐं चवंदा आहिनि त क़दुरु अखियुनि जो उन खां पुछो जंहिंखे जेके अखियुनि जे नूर खां महरूम हूंदा आहिनि। बहरहाल क़दुरु काफ़ी घणनि शयुनि जो हूंदो आहे, पर असां ॻाल्हि कईसीं प्यार जी ऐं प्यार जे ईद जी। त मास्टर मंज़ूर, प्यार जे ईद जी कहिड़ी ॻाल्हि पियो करे?

जी समय हिन वक्त अवां जे इंतज़ार जूं घड़ियूं ख़तम ऐं वरी कुझु नाला हिन अवां ताईं पहुचाईंदा हलंदासीं। असांजा दोस्त आहिनि हाफिज़ मोहम्मद लखमीर ढलू मोरे खां, उन सां गॾु आहिनि सावल ढिलो ताहिर लुंड ऐं शमीर लुंड, उन सां गॾु आहे भाइरनि जी वॾी महिरबानी। ऐं नियाज़ हुसैन महर रेलवे कॉलोनी सखर खां प्रोग्राम ॿुधे बि भाउ जी महिरबानी। ऐं शिकारपुर खां जमालदीन भयो इमदादुल्लाह ऐं नेमतुल्लाह भयो बि प्रोग्राम ॿुधनि पिया। महबूब अली शर ठरी मीरबाग खां, उन सां गॾु आहिनि रिज़वान अली ऐं इमरान अली ऐं नंढड़ी असमा शर। ऐं सजादुल्लाह जमाली ॻोठ मोहम्मद हसन जमाली नवाब शाह खां, उन सां गॾु आहे अली हदर ऐं अली गुल जमाली। क़ुर्बान ख़ासि के अली झंडो मरी खां ऐं मोहम्मद अज़ीज़ जरवार मीरपुर ख़ासि खां, आसिफ़ अली चाचड़ वासिफ़ अली बुगटी वहीद अली जतोई लाड़काणे खां, इक़बाल लाशारी ख़ालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां, अहमद नवाज़ कोरी कंबर खां भाउ प्रोग्राम ॿुधे पियो, ऐं ज़ाहिद हुसैन भाउ प्रोग्राम ॿुधे पियो, रहीम यार ख़ान पंजाब खां भाउ जी वॾी महिरबानी, तमामु परे खां प्रोग्राम ॿुधे पियो, भाउ जा लख कुर्ब। फुलजी स्टेशन खां फौजी पठाण खान खोसो प्रोग्राम ॿुधे पियो, ऐं फुलजी स्टेशन जी यादगिरीअ में असांखे डॉक्टर क़ुर्बान अली जत्याल यादि अची वियो, मरहूम अला साईं हुनखे जनतुल फिरदोस में जॻह ता फरमाए। तमामु पुराणो लिसनर हुयो ऐं तमामु पुराणो अदीब ऐं शाइर बि हुयो, ऐं मोहम्मद कासिम पहवर बि फुलजी स्टेशन खां असांखे यादि अची वियो, भाउ जी वॾी महिरबानी। ऐं अनवर पीरज़ादो सखर खां ऐं दादू शहर खां मीर हज़ार खान डावश सुमेर अली डावश ऐं आफ़्ताब खुश्क भाइर प्रोग्राम ॿुधनि पिया, हुन जी वॾी महिरबानी। ऐं मुरीद बास कटबर जो कलाम आहे, अवां दोस्तनि जे नाम पिया कयूं।

0: जी हा समय प्रोग्राम ईद जो रोशन सुबुह जारी ऐं सारी आहे तव्हां जो असांजो साथ रहंदो ठीकु यारहें वॻे ताईं ऐं तव्हां सां गॾु
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो हल्का कपड़ा पायो मथो ढके रखो उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो वधिक पानी पियो महफूज रहो ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
1: सुनते रहो GFM 90.4

0: It's time to commercial break.
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

हा जी हा समय न हिन वक़्तु असां वरी वापसि अची चुका आहियूं पंहिंजे प्रोग्राम ईद जे रोशन सुबुह में ऐं ईद जो रोशन सुबुह में अव्हां जा नाला शामिल कंदासीं। ॻोठ मोले ॾिने माशी लॻे वॾनि माण्हुनि खां ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तियार अली, ज़हीर अब्बास सोलंगी ऐं नंढड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी। ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर। ऐं ॻोठ अहमद खान लाशारी लॻे धूणनि खां नियाज़ अली लाशारी, नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी। ॻोठ हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई। ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो, मोहसिन अली, अहसन अली, फहद अली ऐं अहद अली, शादाब चांडियो। ऐं ॻोठ छुटो खान मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी। ऐं ॻोठ न पर नारा स्टाप लॻे सब्ज़ी मंडी सखर खां एजाज़ अली जुणे जो, मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जुणे जो। यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फौजी इरशाद महेसर, फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो, डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो, माजिद अली जतोई, निसार अली जतोई। ॻोठ हरसा जी गढ़ी कोरकाणनि खां सूमर फ़क़ीर कोरकाणी ऐं मीन मलक प्रोग्राम ॿुधनि पिया, हुन जी वॾी महिरबानी। ऐं असांजो शमन अली मीराली जो ईद जो ख़ूबसूरत सांग आहे, अवां दोस्तनि नाम पिया कयूं।

जी हा समेन ईद जूं मुबारकूं ऐं ईद जो ॾींहुं अॼु ईद जो ॾींहुं आहे यानी ईद जो ॿियो ॾींहुं आहे अवां सभिनी खे गुज़ारिश आहे त गोश्त अकेला न खाइजो वंडे विराए खाइजो पिरी प्यारनि ॾे माइटनि ॾे दोस्तनि ॾे ऐं ख़ासि करे असांजा जेके ग़रीब मिसकीन मारवाड़ा आहिनि उन्हनि खे कॾहिं बि न विसारिजो ऐं ईद बि उन सां ई थींदी आहे ऐं उन सां जेको अवां प्यार कंदव अवां उनखे जेको शफ़क़त जो हथु घुमाईंदव अवां जी ईद तॾहिं आहे कंहिंखे बि न विसारिजो सभिनी खे विसारिजो त असां वरी अवां खे सारियूं पिया वफ़ा अब्दुल वहीद जतोई ऐं ज़हीर हुसैन जतोई के टी शाहबेली खां दोस्तनि फोन कई हुनजी वॾी महिरबानी ऐं राशिद आवाण मेहरापुर खां भाउ जी वॾी महिरबानी लख कुर्ब नज़ीर अहमद मंगरियो फ़क़ीर नूर मोहम्मद पारो रोहिड़ी खां कॉल कई भाइरनि जी वॾी महिरबानी भा अज़ीज़ सोलंगी ऐं भुट्टो सोलंगी प्रोग्राम ॿुधाइनि पिया असां गॾु ॿुधूं था ऐं अव्हां खे जस ॾियूं था त ईद जा टे ॾींहं प्रोग्राम कयो आहे बिल्कुलु भाउ असांजी ड्यूटी आहे ऐं असांखे ड्यूटी करणी आहे ऐं अव्हां सां प्यार वंडणो आहे अव्हां सां मोहबत करणी आहे त दिलियूं गॾु आहिनि जुदाई कोन्हे का रुस्तम अली पंवर ॻोठु पुनू पंवर सेवण खां ऐं अमीर अली यूसुफ़ शहमीर सतार चाचड़ सालेह पट खां फोन कई भाइरनि जी वॾी महिरबानी ऐं माशूक अली जूणे जो निसार अली जूणे जो ॻोठु चंदड़ नसीराबाद खां ॿाहिरि प्रोग्राम ॿुधनि पिया भाइरनि जी वॾी महिरबानी फराज़ अली सखर खां प्रोग्राम ॿुधे पियो भाउ जी वॾी महिरबानी ऐं असां वटि गेराज़ुर हूंदो आहे तकरीबन काफ़ी टाइम थियो अनवर सोलंकी कुंभन खां ऐं ॿियनि जे हथारां नाला लिखाए पियो पर भाउ पाण फोन कोन पियो करे मोहम्मद बचल शंबाणी आहे ॻोठु हयात शंबाणी नारे खां नूर हुसैन तुनियो बदीन खां ऐं आसिफ अली जूणे जो मोहम्मद खान कुंभार वफ़ा जमालदीन कुंभार मोहम्मद अली कुंभार ॻोठ हाले पोटरा स्टाप मीरपुर ख़ासि खां भाइरनि जी वॾी महिरबानी त समिन प्रोग्राम में आख़िरी लम्हा आहिनि आख़िरी लम्हनि में जलाल चंड जो ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं ईद मुबारकूं अव्हां जे नाम।

जी समय प्रोग्राम ईद जो रोशन सुबुह जा आखिरी लम्हा आहिनि ऐं आख़िरी लम्हनि में जलाल चंड जो आवाज़ बि आउं ॿुधो पिया अव्हां खां मोकिलाईंदा हलंदासीं ऐं वरी इनशाला हयाती रही त सुभाणे जुमे जी सुबुह जो 9 बजे अव्हां सां ज़रूर मुलाक़ात थींदी तेसी ताईं पाण खां मोकिलाईंदासीं नेमतुल्लाह जुणे जो अव्हां खां मोकिलाए पियो अलाह निगाबान कंदासीं पर दिलदार अबड़े जो गज़ल मुंहिंजे साम्हूं अची जेको आहे अव्हां ताईं पहुचाईंदासीं ज़िंदगी विसरी वई दिल लॻी विसरी वई ज़िंदगी विसरी वई दिल लॻी विसरी वई अखि जॾहिं तोखे ॾिठो रोशनी विसरी वई नेण नेणनि सां मिलिया मेहकशी विसरी वई दिल अची दिल सां मिली आशिकी विसरी वई मुर्क मूं तुंहिंजी चखी चाशनी विसरी वई तूं अंगण आहीं पिरी दुश्मनी विसरी वई दिल ॾेई दिलदार खे मुफ़लिसी विसरी वई ज़िंदगी विसरी वई दिल लॻी विसरी वई।

0: जगबदी बावजूद अमेरिका जा ईरान ते बीहर हमला फौजी हंधन के निशानो बणाइण जी दावा अमरीकी इख्तियारन जो चवण आए तो आबराए हुर्मुज वेझो अमरीकी जहाज ते ईरान चार ड्रोन फायर कया। अमरीकी फौज ईरान जे चारई ड्रोन केराए तबाह करे छड़िया। अमरीकी इख्तियारन जो चवण आए तो ईरान जे फौजी हंधन के निशानो बणाए वयो। हमलन जो मकसद अमरीकी फौज आबराए हुर्मुज में तिजारती जहाजन के खतरन का महफूज बणाइण आए। ईरान मीडिया जो चवण आए तो सामूंडी शहर बंदर अब्बास के ओभर वाले इलाके में ट्रेन धमाक जो आवाज बुधा पाया जे बाद फजाई निजाम कुछ देर लाइ फाल कर पो। आबना हुर्मुज से हाँ कें जो भी कंट्रोल न हों ओमान के भी रवैयो दुरुस्त करण पवंद। ईरान डील करण चाहे तो छो तो वर्ष बो को रस्तो ना ईरान से डील थन्दी या असा के कार्रवाई मुकम्मल करनी पवंदी। मायदो थियण जी सूरत में आबना हुर्मुज के फौरी तौर खोलो वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी टीवी के इंटरव्यू संदस चवण हो तो ईरान से वो करे पे सग्यासी जो वेनेजुएला से कयो पर पाकिस्तान की दरख्वास्त हमला बंद कया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियतू आन। ईरान से मायदो अजा फाइनल ना थियो। ईरान की तजवीज कल मायदे से मुतमिन आया। यूरेनियम छड़ने के बदले ईरान त पाबंदन में नरमी न कई वी नई ईरान के एटमी हथियार हासिल कर दीदी। ईरान कमजोर पोजिशन में गाल कर रो है। ट्रंप जो दबाव में न इंदी आबना हुर्मुज जो कंट्रोल ईरान वटी रह। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी जो ट्रंप के धमकी से रदे अमल संदस चवण आए तो रेल लाइन का पोते न हटंदी। ईरान के यूरेनियम रिचाव जो हक हासिल है। पाबंदन में नरमी जो मुतालबो जायज आई। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी जो चवण आए तो यूरेनियम जखीरे जो मामलो अमरीका से हलंदड़ गाल में शामिल ना। आबना हुर्मुज खोलण बाबत अजा तई अमरीका से इतफाक ना थियो। अमरीकी फौज ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म कदी। जवाब में ईरान एक महीने अंदर आबना हुर्मुज में व्यापारी जहाज की आमदो रफ्त बहाल कंदो। उन्हें में फौजी जहाज शामिल न हुंदा। ओमान के सहकार से आबना हुर्मुज में जहाज की अचवन रूट्स जो इंतजाम ईरान कंदो। ईरानी सरकारी मीडिया ईरान अमरीका विच में इम्कानी मफामती याददाश्त जा तफसील सामू आने छड़िया। ईरानी मीडिया मूजिब इस्लामाबाद मेमोरेंडम फ्रेमवर्क फिलहाल हतमी ना। पकी तस्दीक सिवाय ईरान को भी कदम न खड़ो। व्हाइट हाउस इम्कानी मफामती याददाश्त बाबत ईरानी मीडिया की रिपोर्ट रद्द कर छी। व्हाइट हाउस जो चवण है तो ईरानी मीडिया पारा जारी कल एमओयू कूड़ से बदल है। योम तकबीर के 28 सालगिरह हथियारबंद फौज के सरबराहन की कौम के मुबारकबाद। आईएसपीआर मौजूद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एयर चीफ और नेवल चीफ कौम के मुबारकबाद पेश कई। योम तकबीर तारीखी कारनामा याद डारे तो जडे पाकिस्तान एटमी ताकत बढ़ी उभरियो। इन डी पाकिस्तान जो दखण एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाजुन बहाल थो। ही कामयाबी पाकिस्तानी कौम और पाक फौज की कुर्बानी जो समर है। पाक फौज मुल्क की सलामती खुशहाली और इस्तेकाम लाए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के दिफाई स्ट्रेटेजिक सलाहियत मुकदस कौमी अमानत है। सदर आसिफ अली जरदारी चयो आए तो 28 मई 1998 में चाघी के पहाड़न से कामयाब एटमी धमाका कर स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तियारी और दिफाई तवाजन हासिल कर। असा मुस्तबिल के चैलेंजेस का आगाह आयू और मुंह डेण की सलाहियत रखू था। सदर आसिफ अली जरदारी जारी कल पैगाम में चयो आए तो बुनियादुल महसूस ऑपरेशन में भारतीय जारी जो मुंह तोड़ जवाब दिनो। पाकिस्तान कैंजी भी खिलाफ जारी जो इरादो न थे रखे। असा जिम्मेवार और अमन पसंद कौम आयू। योम तकबीर के मौके से अहद क्यों था का भी कुर्बानी देने लाय तैयार आयू। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो चवण आए तो योम तकबीर पाकिस्तान की तारीख जो अजीम और फैसला तो डी है। पाकिस्तान साबित कर असा दिफाई सलाहियत रखू था। शहीद जुल्कार भुट्टो नवाज शरीफ डॉक्टर कदीर और डॉक्टर समर मुबारक के खिराज तहसीन पेश किया तो।
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में तेज जबरदस्त।
2: पेश है नया तलो एक्टिव एनर्जी से भरे खाने, इसीलिए सब बच्चे यही है चाहते।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
5: मोर को दिल्ली राणा, मोर को दिल्ली।
4: आ आवाज की डोर से बंधा हुआ।
6: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
7: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
8: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। वधीक पाणी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
9: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
10: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
10: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
9: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
10: जी हाँ, 2315525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क
10: सिंध जो आवाज।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 Network, सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

ईद जे इन पुर मुसरत मौके ते प्रोग्राम दिल वारी तो साण करे मां तव्हां जो पंहिंजो मेज़बान गुलाब खान भेण कहिड़ा हाल अथव सॼणो ठीकु आहियो त भई सही आहे तव्हांजी उमेद रब करीम तव्हां सभिनी मुंहिंजनि भाउरनि ऐं भेनरुनि ख़ैरियत कई हूंदी ऐं इहो ॿुधायो त ईद कीअं पई गुज़रे गर्मी बि आहे पंहिंजी जाइ ते ईद में न तमामु घणी त कलो को ॾींहुं ईद जो तव्हांजो कीअं गुज़रियो ऐं अॼोको ॾींहुं ईद जो तव्हांजो कीअं पियो गुज़रे ईद जूं तयारियूं कहिड़े क़िस्म जूं हुयूं ऐं हीअ ईद त वॾी ईद आहे न ईद उल उज़हा क़ुर्बानीअ वारी ईद आहे त किन किन दोस्तनि क़ुर्बानी कई न कई या अञा सुभाणे बि कंदा छो जो अॼोको ॾींहुं बि आहे सुभाणे को ॾींहुं बि आहे त हुन हवाले सां समूरी डिटेल जेका आहे उहा तव्हां मूंखे ॿुधायो।

जी एफ एम नेटवर्क की तरफ का हलंदड़ ये जगह समूरी ईद ट्रांसमिशन है उन में असा सा गद आन असा प्यारा सखर वारा लिसनर्स असा ने प्यारा लाड़काने वारा मीरपुर खा मटिया असा प्यारा प्यारा असा सा गद गद आन अच्छा हाँ इन प्रोग्राम में तुम शामिल थी सको था शामिल थे जो पहरों पहरों तरीके कार तो वही सागो अथव जो राइट मैसेज ऑप्शन में वनबो एम आर ओ लिखो स्पेस डीवी स्पेस का लिखो पांजो नालो पांजे गोट है या शहर जो नालो लिखी करे मोकलींदा असा के तमाम 888-1 से उनके अलावा बो जो तरीको है वो है लाइव कॉल जो तुम असा इन प्रोग्राम में लाइव कॉल के जरिए शामिल थी सकता नंबर नोट कर नंबर अथव 0327 3684620 0327 3684620 यो नंबर है इन नंबर से तुम कॉल करना कॉल कर प्रोग्राम में शामिल थी दादे प्रोग्राम में हलूँ था एक जबरदस्त ट्रेक है मुझे प्लेलिस्ट में उन तरफ आई उन वी कॉल्स आई पढ़ा तवा मोकिल मिठड़ा मिठड़ा मैसेजेस।

अज सजण मुं ईद कई छॾे यार जा दीदार थिया तो फिर सजण जो खूबसूरत आवाज़ हितां जो सुंदर समातूं त कॉलर असां सां गॾु हलूं था कॉलर जे तरफ़ अस्सलाम वालेकुम जी अदा केर किथां खां ॻाल्हाए रहिया आहियो जी हाफ़िज़ लखमीर कहिड़ा हाल आहिनि ठीकु आहियो तबियत सही आहे ईद जूं बि मुबारक हुजनि तव्हांखे शुक्र अलहमदिल्ला ॾियो हाल अहिवाल ईद तव्हांजी कीअं गुज़री अच्छा जीअं तीअं करे ईद गुज़ारी आहे भला रेडियो असांजो ॿुधंदा आहियो अच्छा सही आहे सही आहे वॾी महिरबानी तव्हांजी मुंहिंजा मिठा दोस्तनि खे यादि कयो जी हा ॿुधायो कहिड़ो कलाम ॿुधंदा अच्छा इहो कहिड़े गाइण जो आहे तव्हां थोरो गाए ॿुधाईंदो भला अच्छा ठीकु आहे वॾी महिरबानी हाफ़िज़ साहब तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो हुनजे लाइ तमामु घणी महिरबानी त मुंहिंजा मिठा साईं तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था बदरिया SMS जो तरीक़ेकार आहे पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो MRO लिखो स्पेस जो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो 888 ते हुन खां अलावा तव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल जे ज़रिए बि शामिल थी सघो था लाइव कॉल नंबर आहे 0327 36 84 620

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी मुंहिंजनि मिठनि प्यारनि भाइरनि ऐं भेनरुनि खे दिल वारी ईद प्रोग्रामी भलीकार ऐं तव्हांखे मां इहो ॿुधाईंदो हलां त असांजे हिन प्रोग्राम दिलवारी ईद में असांखे ज्वाइन कयो आहे मोरो जी बहितरीन आरजे लैला। जी हा बिल्कुल, लैला बि हिन वक़्तु असांखे ज्वाइन करे वरितो आहे। लैला बि अची वई असांजे प्रोग्राम में। लैला अस्सलाम वालेकुम। लैला अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम।
0: कहिड़ा हाल नवां जा? ठीकु
1: आहियो? अलहमदुलिल्लाह आऊं ठीकु आहियां। तव्हां कीअं आहियो?
0: शुक्र अलहमदुलिल्लाह, अलाह जा एहसान। ॾियो हाल अहिवाल, तव्हांजी ईद कीअं गुज़री भला?
1: माशाल्लाह ज़बरदस्त, तमामु घणी बहितरीन गुज़री। शुक्र,
0: मतलबु अहिड़ी गर्मीअ में बि भली गुज़री आहे।
1: जी जी, हैप्पी गुज़री अलहमदुलिल्लाह।
0: अच्छा, असां वटि त इंतिहा दर्जे जी गर्मी आहे। हाणे ॿियनि शहरनि में ख़बर न आहे केतिरी गर्मी हुई।
1: जी जी,
0: ऐं पाण त सॼो ॾींहुं घर में ई गुज़ारियो। मतिलब हीअ ईद आहे ॿारनि जी जहिड़ो न?
1: जी जी, ऐं गोश्त खाइण जी हूंदी आहे।
0: गोश्त खाइण गर्मी में गोश्त बि न पियो वणे, छा करे माण्हू। ऐं ख़ुशियुनि जा मौक़ा आहिनि, अल्ला ताला हर घर में इन क़िस्म जूं ख़ुशियूं हमेशह हमेशह
1: आणे।
0: ऐं उहो इहा जेका ईद आहे न, हर कंहिंजे घर में ख़ुशियूं बरकतूं ऐं रहमतूं आणे। क़ुर्बानी जी ईद आहे। क़ुर्बानी तव्हांखे ख़बर आहे अल्ला ताला खे सभ खां वधीक पसंदीदा जेको आहे न फैल उहो आहे हिन ईद ते क़ुर्बानीअ जो। जेका क़ुर्बानी माण्हू करे थो त उन में अल्ला ताला तमामु घणो राज़ी।
1: जी जी, बाक़ी कथा बिल्कुलु।
0: ऐं बाक़ी क़ुर्बानीअ वारी ईद ते वरी पोइ हिकिड़ो मसइलो इहो हूंदो आहे, ख़ासि करे लेडीज़ सां त उन्हनि खे घर में वधीक कमु करणो पवंदो आहे। ईअं हूंदो
1: आहे?
0: जी हा, ईअं ई हूंदो आहे। ऐं कॉलर बि अॼु असां सां लेला गॾु आहिनि। हलूं था हिकु कॉलर जे तरफ़। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी अदा, केर किथां खां ॻाल्हायो पिया?
2: मोरो खां।
0: जी जी अदा, ठीकु आहियो? त भई सही आहे, ईद जूं बि मुबारकूं अवांखे। महिरबानी मुंहिंजा मिठा। अच्छा, इहो ॿुधायो ईद तव्हांजी कीअं गुज़री आहे? हा, ॾाढो सही। अच्छा, प्रोग्राम शुरू खां वठी ॿुधो पिया? ठीकु आहे, पोइ हिन प्रोग्राम जो नालो छा आहे? अच्छा, मतिलब त तव्हां इहा शइ नोट ई कोन कई आहे त हिन ईद पंहिंजे हिन प्रोग्राम जो नालो छा आहे। चङो, भले ठीकु आहे, दोस्तनि खे शामिल कयो भले। हा, ईअं चओ न, ईअं चओ, दिलवारी ईद आहे। ऐं असांजो नेटवर्क तव्हां ॿुधंदा आहियो? सही आहे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, हाणे इहो दोस्तनि खे पंहिंजो शामिल कयो प्रोग्राम में। हा हा, ॿुधायो फरमाइश कहिड़ी आहे दादा? अच्छा, अञा थोरो अॻिते हल न भा। अच्छा, ठीकु आहे, सही आहे, सही आहे। वॾी महिरबानी दादा, तव्हां असांखे कॉल कई, लख एहसान, लख कुर्ब तव्हांजा। अधे फरमाइश कई आहे लैला त चवे थो अॼु ई दवा ऐं मूंखे मिलाए को यार सां।
1: जी जी, हक़ीक़त।

0: हलो था लाइव कॉल जे तरफ दिसुदा केडो कॉलर अस सा गड मौजूद आ अस्सलाम वालेकुम
1: हाय वालेकुम सलाम केबला खुश है खैरा ईद मुबारक
0: अलहमदुलिल्लाह अल्लाह जे एहसान अदा खैर मुबारक केर गलाए पे मुजो भा
1: साईं माता जो पुरानो खातम ताल पिरी प्यारो हाफिज मंथा लोडरो
0: की तो के खबर पई ते तू मुजो पिरी प्यारो आ खादम आसा भाजा वा तुझे खोड़ सारी मोहब्बत समूरा जी लिसनर्स खोड़ सारी मोहब्बत प्यार है बाकी खादम नौकर केर कि ना है। अच्छा ईद कि गुजारी साई तुम जी हाँ बिल्कुल पांच दोस्त के शामिल कर यार तुझो आवाज भलो दिल चे थी असा कलाम के गाय बुधायो हलो भला बी बुधा वाह वाह जबरदस्त तो कलाम तो बुधा सुठो कलाम अथई अलह कह तो पसंद अची वो तुझे जी तकलीफ हुआ ना घट थी वी ईद वार
2: तकलीफ ना लेकिन इश्क मोहब्बत सिक्का वाली के
0: हाँ उतम नहीं।

अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: जगबदी बावजूद अमेरिका जा ईरान ते बीहर हमला फौजी हंधन के निशानो बनाने की दावा अमरीकी इख्तियार जो चवण आए तो आबराह हुरमुज वेझो अमरीकी जहाज ते ईरान चार ड्रोन फायर कया। अमरीकी फौज ईरान के चार ही ड्रोन केराए तबाह कर छड़ा। अमरीकी इख्तियार जो चवण आए तो ईरान के फौजी हंधन के निशानो बनाए वो हमलों जो मकसद अमरीकी फौज आबराह हुरमुज में तजारती जहाजन के खतरन का महफूज बनाने है। ईरानी मीडिया जो चवण आए तो सामुंडी शहर बंदर अब्बास के ओभर वाले जे बाद फजाई निजाम कुछ देर लाइ फाल कर पो। आबना हुरमुज से हाँ कें जो भी कंट्रोल न हों ओमान के भी रवैयो दुरुस्त करण पवंद। ईरान डील करण चाहे तो छो तो वर्ष बो को रस्तो ना ईरान से डील थन्दी या असा के कार्रवाई मुकम्मल करनी पवंदी। मायदो थियण की सूरत में आबना हुरमुज के फौरी तौर खोलो वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी टीवी के इंटरव्यू संदस चवण हो तो ईरान से वो कर पे सी जो वेनेजुएला से कर पर पाकिस्तान की दरख्वास्त हमला बंद कया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियतू आन। ईरान से मायदो अजा फाइनल ना थो। ईरान की तजवीज कल मायदे से मुतमिन आया। यूरेनियम छड़ने के बदले ईरान त पाबंदन में नरमी न कई वी नई ईरान के एटमी हथियार हासिल कर दींदी। ईरान कमजोर पोजिशन में गाल है। ट्रंप जो दबाव में न इंदी आबराह हुरमुज जो कंट्रोल ईरान वटी रहो। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी जो ट्रंप के धमकी से रदे अमल संदस चवण आए तो रेड लाइन का पोते न हटंदी। ईरान के यूरेनियम रिचाव जो हक हासिल है। पाबंदन में नरमी जो मुतालबो जायज आई। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी जो चवण आए तो यूरेनियम जखीरे जो मामलो अमरीका से हलंदड़ गाल में शामिल ना। आबना हुरमुज खोलण बाबत अजा तई अमरीका से इतफाक न थो। अमरीकी फौज ईरान के बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी। जवाब में ईरान एक महीने अंदर आबना हुरमुज में व्यापारी जहाज की आमदोरफ्त बहाल कंदो। उन्हें में फौजी जहाज शामिल न हुंदा। ओमान के सहकार से आबना हुरमुज में जहाजन की अचवन रूट जो इंतजाम ईरान कंदो। ईरानी सरकारी मीडिया ईरान अमरीका विच में इम्कानी मफामती याददाश्त जा तफसील सामू आने छड़ा। ईरानी मीडिया मूजिब इस्लामाबाद मेमोरेंडम फ्रेमवर्क फिलहाल हतमी ना। पकी तस्दीक सिवाय ईरान को भी कदम न खड़ो। व्हाइट हाउस इम्कानी मफामती याददाश्त बाबत ईरानी मीडिया की रिपोर्ट रद्द कर छी। व्हाइट हाउस जो चवण है तो ईरानी मीडिया पारा जारी कल एमओयू कूड़ से बदल है। योम तकबीर के 28 सालगिरह हथियारबंद फौज के सरबराहन की कौम के मुबारकबाद। ISPR मौजूद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एयर चीफ ए नेवल चीफ कौम के मुबारकबाद पेश कई। योम तकबीर तारीखी कारनामा याद दियारे थो जडे पाकिस्तान एटमी ताकत बढ़ी उभरियो। इन डी पाकिस्तान जो दक्षिण एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाजुन बहाल थो। ही कामयाबी पाकिस्तानी कौम ए पाक फौज की कुर्बानी जो समर है। पाक फौज मुल्क की सलामती खुशहाली इस्तेकाम लाए पुर अज़्म है। पाकिस्तान के दिफाई स्ट्रेटेजिक सलाहियत मुकद्दस कौमी अमानत है। सदर आसिफ अली जरदारी चयो है तो 28 मई 1998 में चागी के पहाड़न से कामयाब एटमी धमाका कर स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तियारी दिफाई तवाजन हासिल कर अस मुस्तबिल के चैलेंज।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: कयो यानी 8881 ते मोकलियो।
1: ऐं उन खां अलावा तव्हां असांजे हिन लाइव कॉल जे ज़रिए हिन प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। लाइव कॉल जो नंबर आहे 0327-3684-620। हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे ॿुधायां, 0327-3684-620 कॉलर आहे। हलो था कॉलर तरफ़। अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम। अलाह जे करम अदा, अलाह जे करम। केरु ॻाल्हायो था, किथां ॻाल्हायो था? साईं साईं साईं, स्पेशली तव्हांखे असां भलीकार चऊं था। तव्हां हमेशह असांजे प्रोग्रामनि में शामिल थींदा आहियो, SMS बि कंदा आहियो, ऐं अॼु तव्हां लाइव कॉल जे ज़रिए असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया। स्पेशली मुंहिंजे तरफ़ खां, लीला जे तरफ़ खां, असांजे पूरे नेटवर्क जे तरफ़ खां तव्हांखे असां वेलकम चऊं था। ख़ैर मुबारक, ईद ख़ैर जी कयव बा? हा सही आहे, सही आहे। पंहिंजे बचनि सां गॾु ईद कई, अलाह जी महिरबानी आहे। अलाह ताला जा

0: खोड़ किरोड़े करम आहिनि असांजे मथां, जो असां पंहिंजे अज़ीज़नि सां, पंहिंजे मिटनि माइटनि सां, ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां, ऐं पंहिंजे औलाद सां गॾु कयूं था।
1: बिल्कुलु साईं, बिल्कुलु
0: जी हा। प्रोग्राम में कंहिं दोस्त खे शामिल करणु चाहियो त करे सघो था। हा जी हा, बिल्कुलु, इहो ॾाढो सुठो सॉन्ग आहे, ऐं मां कोशिशि कयां थो, अगरि मुंहिंजी लाइब्रेरी में मौजूदु आहे त मां तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदुमि। हा, इहा बि ॻाल्हि आहे, गोश्त भली थोरो माण्हू घटि खाए त सुठो न आहे। पुछा थींदी हर पुर्दे जी, बिल्कुलु सही था चओ, इएं ई आहे। वॾी महिरबानी साईं, तव्हां प्रोग्राम में शामिल थिया।

0: aveva cali in scelti.
1: आए मां कोशिश किया तो अगर मुझे आए आए आए आए मां कोशिश किया तो अगर मुझे लाइब्रेरी में मौजूद आए तो मैं तुम्हें जरूर बुलाए दम
0: और बोस बोस भाव का दो ना मजा एक लहू ना कुछ आ कुछ आ
1: हां या भी या भी गाल आए तो गोश्त भले थोड़ो मानो घट खाए तो सटो ना है पुछा थी हरपुर जी बिल्कुल सही था चो इन ही आए वही मेहरबानी से प्रोग्राम में शामिल थे।

0: કોઈ મસલો નાય, કયો મસલો નાય, કા ગાલ નાય, ભલા ગોશ્ત ખાધો અથઈ? હા સુઠો ખાધો અથઈ, મળી હલકો ફુલકો ठीक है ठीक है। दा वडी मेहरबानी ता सने शो में शामिल है। छा चवण चाहिदा ईद जे हवाले सा?
1: असा पने दोस्त लगे याद कनासी
0: भली सही याद कयो। बिस्मिल्लाह मुझे अखिन ते
1: तार का बड़वा निजाम अपड़वा सऊदी खा असा जो प्यारो बा आप तो सऊदी खा असा जो प्यारो बा दा मोरो का गुलाम से नपड़वा मोबी ना लिया बड़ो मुझे फरजन दा मोबी ना लिया बड़ो।
0: ठीक है ननड़े के भी भली कार चाहुंदा दा जी। महिरबानी मिठा, अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखंदो। तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो, पहिरियों दफ़ो शामिल थिया आहियो, थैंक यू।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हलो था लाइव कॉल के तरफ दिसू था कड़ो कॉलर अस वक्त लाइन से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम सलाम
0: अदा साईं केर किथां खां ॻाल्हायो था? जी अदा तव्हांजो आवाज़ सही नथो अचे मुंहिंजा मिठा। आवाज़ अध जो सही न पियो अचे ऐं अलाह ख़ैरु कंदो। अदा वरी तव्हां असांखे कॉल करे सघो था सिग्नल वारी जाइ तां बीह करे। ॿियो कॉलर आहे। अस्सलाम वालेकुम। जी अदा साईं अलहमदुल्ला अलाह जा एहसान। अदा मुंहिंजा केरु ॻाल्हायो था? किथां ॻाल्हायो था? किथां खां ॻाल्हायो था? हाय हाय रहीम यार खान। यार रहीम यार खान त असांजो पसंदीदा शहर
1: आहे।
0: ज़बरदस्त हले पियो थो न यार। मूंखे तव्हांजी ॿोली ॾाढी वणंदी आहे। तव्हां ॾाढो मिठो मिठो ॻाल्हाईंदा
2: आहियो।
0: हा सराइकी बेल्ट वारा जेके तव्हांजी ॿोली ॾाढी प्यारी आहे। हिकु दफ़ो मां आयो हुयुमि ॾांहुं त हुते असां रहिया हुयासीं त जेके माण्हू ॻाल्हाइनि पिया ॿोली ॾाढी प्यारी ॿोली पिया ॻाल्हाइनि।
1: मोहबत बि घणी आहे। अॼु असां ॿुधायूं माना असांखे एॾो सुठो पियो लॻे यार। असां चवंदा असांजो पंहिंजो शहर थो हले पियो।
0: अच्छा भला इहो मूंखे ॿुधाए ईद कई?
1: हा ईद भली कई असां वॾे ड्रॉ करे खाधासीं पीतासीं।
0: अच्छा गोश्त मतिलब ड्रॉ करे। गर्मी भला रहीम यार खान में एतिरी आहे जेतिरी सखर मोरो में आहे?
1: सखर मोरो में साईं गर्मी ॾाढी आहे पर हिते गर्मी थोरी आहे। 45-42
0: अच्छा अच्छा गर्मी त हाणे मतिलब थोरी आहे। असां त साईं 50 खां टपंदा पिया वञूं।
1: सॼी हवा खे वापियो लॻे।
0: हा बिल्कुलु सही आहे। अदा छा ॿुधणु चाहींदा रेडियो असांजे एफ एम ते?
1: साईं असांखे हिकिड़ो गानो ॿुधाए छॾियो।

0: हींअर मैसेज आयो शेख साहब जो मुंहिंजा महिरान रोड़ी मां हुन जो मैसेज आयो मां ॿुधो ॿुधां पियो मां यार मैसेज कयां अथव बि
1: अच्छा अछो पाए पिरी वेस इहो अथव निशा अलीअ जो इहो
0: निशा अली जी जी जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु साईं
1: अच्छा ठीकु आहे दादा तव्हांखे असांखे ॿुधायो
0: सखर वारनि खे मोर वारनि खे लाड़काणे वारनि खे मैरापुर वारनि खे कराची पूरे पाकिस्तान सॼी दुनिया खे मुंहिंजे तरफ़ां सलाम थी विया सॼे मुसलमान भेनरनि खे भेनरनि खे ईद मुबारक थी वियो साईं
1: वालेकुम असलाम ऐं तव्हांजी ईद मुबारक पहुची चुकी आहे तव्हांजी ज़िबानी उन्हनि तोड़ी ऐं इनशाला ताला तव्हांखे तव्हांजी पसंदि जो सॉन्ग हाणे ई ॿुधायूं था तव्हां रेडियो सेट ऑन कयो ऐं ॿुधो पंहिंजे पसंदि जो सॉन्ग

0: कुर्बानी के जज्बे के साथ ईद मनाएं, सबको गले लगाएं। बड़ी ईद की बड़ी मुबारक। जीए सक्कर एफएम 88 की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद उल अजहा मुबारक हो।
1: दिल जी कह रहे हैं तो बेहर ईद प्रोग्राम दिलवारी में भली कार चवा थी। तमाम बुधी रहा पंजो पसंदा प्रोग्राम आज ईद वारो दिल्ली ईद मुबारक है। उनस में मां आई मुसा कजी सर आरजे गुलाब खान बेण आइन।
2: जी बिल्कुल, असान जो को ही शो है उन शो जा आखिरी लम्हा छो जो टाइम पूरो थियण वारो है। पूरे थियण वाले टाइम के दौरान एक बार तहां कॉल भी वठंदासीं, कुछ जेके मैसेज आइन उहे भी तहां जा प्रोग्राम में शामिल कंदा हलंदासीं, जन असां दे प्यारन माण्हुन मैसेज मोकलिया आहिनि। अच्छा, शेर मोहम्मद इमरान रिजवान फरहान अली चांडियो पान के बुधी रहा चवन था लैला सुमरो गुलाब खान भेण के दिल की गहराइन से ईद जू मुबारकू। खैर मुबारकू मुझे मिठाई अदा जन खबर किथा लिखो है लैला इन गोठ बहादुर खान चांडियो का अदा मेहरबानी अदा शेर मोहम्मद इमरान रिजवान फरहान चांडियो थैंक यू वेरी मच। पुलजी स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो जो जो है मैसेज आयो है चवन था दिलशियर तीवणे के कलाम में असां खे कलाम बुधरायो दिलशियर तीवणे के कलाम जी जेका बोल आहिनि उहे हुन लिखिया आहिनि तुंहिंजे चीच जो छलड़ो हुजां तुंहिंजे ॻीछीअ जो हार हुजां। डेडिकेट कंदा फौजी आज़ाद खान के महरबानी मुझा मिठा तवां असांजे शो में शामिल थिया। अहिड़े तरीक़े सां कॉलर भी असां सां मुसलसल आहिनि त हलूं था कॉलर तरफ़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: सलाम,
2: कहिड़ा हाल अदा, केरु ॻाल्हायो था, किथां ॻाल्हायो था?
3: सर, मां आज ज़ायाद अली सोलंकी स्टेशन सीता रोड परियां।
2: जी जी अदा साईं, असांजो शो तव्हां ॿुधो पिया, नेटवर्क ॿुधंदा आहियो सदाईं या सिर्फ़ अॼु पिया ॿुधो?
3: न सर, डेली ॿुधंदा आहियूं तव्हांजो, हर प्रोग्राम ॿुधंदा आहियूं सर।
2: पक?
3: जी जी जी।
2: अच्छा ठीकु आहे, ईद कई अथई भला? ईद
3: शुक्र अलहमदुलिल्लाह सर, ईद कई अथई ख़ैर सां।
2: पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु कई या विछोड़े में कई?
3: सर, दोस्तनि सां बि कई सी, रिश्तेदारनि सां बि कई सी।
2: मन विछड़ियल ईद त कोन कई न जेके माण्हू रड़ियूं पिया था कनि? हा सही आहे, बहितर आहे यार, ईअं कजा, न त सभु चवनि पिया घोड़ा ॾियांसीं। असां ईद ॾुख सां कई आहे, तव्हां ख़ुशीअ सां ईद कई, वॾी महिरबानी आहे आला जी तव्हांजे मथां। अच्छा हाणे पंहिंजे दोस्तनि खे शामिल कयो।
3: सर, मुंहिंजो चाचो आहे मिठो सोलंकी ऐं मुंहिंजी नंढड़ी आहे जेको तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रही आहे सूंह सोलंकी।
2: हा
3: सर, असांखे हिकिड़ो कलाम ॿुधायो फोटे ज़रदारे जो, ईद आई यार आयो, ॿई ख़ुशियूं गॾिजी पयूं।
2: अच्छा कलाम तव्हांजो ॾाढो सुठो आहे, पर हाणे टाइम वञी थोरो बचो आहे, मां कोशिश कयां थो न त सुभाणे जेको टी वारो असांजो शो थींदो न लैला जो ऐं मुंहिंजो, उन में तव्हां वरी लाइव कॉल करे वठिजो, तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। पक सही आहे
3: सर, इहा तव्हांजी महिरबानी, तव्हांजी महिरबानी, वॾी वॾी महिरबानी सर।
2: ठीकु आहे, महिरबानी अदा, महिरबानी तव्हांजी, अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखंदो। अहिड़े तरीक़े सां मैसेज बि आहे ॻोठ मोहम्मद इब्राहिम संदीलो खां मोहम्मद हारून संदीलो ऐं मोहम्मद याकूब संदीलो। अदा हारून, कहिड़ा हाल नवां जा? ठीकु आहियो, त सही आहे, ईद जूं मुबारकूं हुजनि अव्हांखे बि।

0: असां कॾहिं कॾहिं प्रोग्राम जो वक़्त बि पहुची वियो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते वञण खां पहिरियां हमेशह तव्हांखे चवंदासीं पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखिजो बाबा गर्मी घणी अथव गोश्त थोरो खाजो बचाए रखो फ्रिज भरे रखो को मसलो न आहे ईअं न
1: लीला मिर्चनि में इस्तेमालु कनि पोइ कुझु न थींदो
0: हा पकी ॻाल्हि आहे
1: पकी
0: ठीकु आहे अॼु लीला असांखे बि गोश्त खाराईंदी पंहिंजे ऑफिस जी टीम खे ऐं कारनि मिर्चनि में जॾहिं ठाहे खणी ईंदियसि ऐं ॾिसूं था त पोइ तव्हां बि कारनि मिर्चनि में ठाहे खाई सघो था उनसां गॾु तव्हांखे चवंदासीं बाबा गर्मी आहे नंढनि ॿारनि जो बि ख़्यालु रखिजो उन्हनि खे ॿाहिरि हरूभरू न मोकिलिजो गर्मीअ में कंहिं कम कार सां ऐं जेके शहर में आहिनि माण्हू उन्हनि सां त बिजलीअ जो आधार हूंदो ई हूंदो बरहाल पखे ऐं छांव खां परे न थीजो गर्मी तमामु घणी आहे अलाह ताला तव्हांजी ज़िंदगी में खोड़ सारियूं ईदूं आणे ऐं ख़ुशि ईदूं तव्हांजे घरनि में हुजनि ख़ुशियूं हुजनि ऐं रहमतूं ऐं बरकतूं हुजनि त ॿिए प्रोग्राम ते पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण
1: ऐं लीला खे ॾींदा इजाज़त तेसीं ताईं अलाह निगेबान अलाह वाही
0: अलाह निगेबान अलाह वाही

0: जेको असर वेनेजुएला सां कयो उहो ईरान सां करे पिया सघूं। ओमान रहियो दुरुस्त न कयो त ओमान खे बि तबाह करे छॾींदासीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिकी टीवी खे इंटरव्यू। सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त पाकिस्तान जी दरख़्वास्त ते ईरान ते हमला रोकिया। अब्दुल हमूस ते हाणे कंहिंजो बि कंट्रोल न हूंदो। ईरान वटि डील खां सवाइ ॿियो रस्तो न आहे। यूरेनियम छॾण जे बदिले ईरान तां पाबंदियुनि में नरमी न कई वेंदी। नई ईरान खे एटम हथियार हासिल करणु ॾींदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहितरीन शख़्सियतूं आहिनि। ट्रम्प जे दबाव में न ईंदासीं। अब्दुल हमूस जो कंट्रोल ईरान वठी रहंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जे सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी जो ट्रम्प जी धमकीअ ते रद अमल। सदस्य वराए ईरान खे यूरेनियम रिसाव जो हक़ हासिल आहे। पाबंदियुनि में नरमीअ जो मुतालबो जाइज़ आहे। ईरानी क़ौमी सलामती काउंसिल जे नायब सेक्रेटरी अली बाकरी जो चवणु आहे त यूरेनियम ज़खीरनि जो मामिलो अमेरिका सां हलंदड़ ॻाल्हियुनि में शामिल न आहे। अब्दुल हमूस खोलण बाबति अञा ताईं अमेरिका सां इतफ़ाक़ नाहे थियो। जंगबंदी जे बावजूद अमेरिका जा ईरान ते ॿीहर हमला। फ़ौजी हंधनि खे निशानो बणाइण जी दावा। अमेरिकी इख़्तियारनि जो चवणु आहे त ईरान जे फ़ौजी हंधनि खे निशानो बणायो वियो। हमलनि जो मक़सदु अमेरिकी फ़ौज ऐं अब्दुल हमूस में वापारी जहाज़नि खे ख़तरनि खां महफ़ूज़ बणाइण आहे। ईरान पारां बि जवाब में अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणाइण जी दावा। ईरान जे पासदारनि इनकलाब जो चवणु आहे त जवाब में अमेरिकी फ़ौजी अॾे खे निशानो बणायो वियो। इन ई अॾे तां ईरान ते हमिलो कयो वियो हो। रूसी ख़बरू एजेंसी मूजिब तेल सां भरियल अमेरिकी जहाज़ अब्दुल हमूस खां गुज़रण जी कोशिश कई। पासदारनि इनकलाब जहाज़ ते वार्निंग शॉट्स फायर करे जहाज़ खे वापसि वञण ते मजबूर करे छॾियो। अठावीह योम तकबीर ते सदर ऐं वज़ीर आज़म जो पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त 28 मई 1998 में चागी जे पहाड़नि ते कामयाब एटमी धमाका करे स्टेट जे ख़ुदमुख़्तियारी ऐं दिफ़ाई सलाहियत रखूं था। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भारतीय जारियत जो मुंहं तोड़ जवाब ॾिनो। असां पसंदि क़ौम आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त जोम तकबीर पाकिस्तान जी तारीख़ जो अज़ीम ऐं फ़ैसिलाइतो ॾींहुं आहे। शहीद ज़ुल्फ़िकार ख़ान डॉक्टर समर मुबारक खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। 28 योम तकबीर ते हथियारबंद फ़ौजुनि जी सखे वधायूं। ISPR मौजूद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एयर चीफ ऐं नेवल पाकिस्तान उभरियो। उन जी तवाज़ुन बहाल थियो। ही कामयाबी पाकिस्तानी क़ौम ऐं पाक फ़ौज जी क़ुर्बानीनि जो समर आहे। पाक फ़ौज मुल्क जी सलामती खुशहाली इस्तेहकाम जे लाइ पुरज़म आहे। पाकिस्तान जी दिफ़ाई सिर जी सलाहियत मुक़दस क़ौमी अमानत आहे। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी मिना में सऊदी अरब मंसब अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद सां मुलाकात। ॿिन्ही घर वज़ीरनि हिक ॿिए खे ईद जूं वाधायूं ॾिनियूं। गॾियल पधराई मूजिबि अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद घर वज़ीर मोहसिन नक़वी खे हज जूं वाधायूं ॾिनियूं। पाक सऊदीया बितरफ़ लाॻापल ऐं अंदरूनी सिक्योरिटीअ ते ख़्यालनि जी ॾे वठि बि कई वई। पधराई मूजिबि FC स्पेशल डिप्लोमेट प्रोटेक्शन जा 200 अहलकार सऊदी में तरबियत हासिल कंदा। सऊदी वज़ीर पारां छिकताण घटाइण में पाकिस्तान जे हाकारी किरदार जी साराह। कोॾ जी भरिसां ॿिनि धुरनि में पुराणे तकरार सां झेड़ो। फायरिंग में हिकु ॼणो क़तल, 3 ज़ख़्मी। ॻोठ मिठण फ़क़ीर कांधड़ो में
1: वारंटी कार्ड। अब जाना पड़ेगा कार्ड लेने।
2: योर रॉयल हाइनेस, हर रॉयल इन्वर्टर फैन गुजरता है 7 कंप्यूटराइज क्वालिटी टेस्ट से फॉर परफॉर्मेंस अश्योरेंस एंड सेफ्टी। बस QR स्कैन करो, रजिस्टर करो और वारंटी शुरू। सर्विस भी घर बैठे। रॉयल इन्वर्टर फैंस,
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज,
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
7: तो
6: पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन
7: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाइन लाए
6: असन जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हन नंबर ते رابطو कंदा
7: 0331252578
6: जी हाँ बुड़ी 331 525 786
7: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अजा के पुर मुसरत मौके पर जीएस अखड़ एफएम 88 की जानिब से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद।

0: कुर्बानी के जज्बे के साथ ईद मनाएं, सबको गले लगाएं। बड़ी ईद की बड़ी मुबारक। जीए सखर एफएम 88 की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद उल अजहा मुबारक हो।
1: दुआओं के समान दहे शहादों की बारिश उलास और खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आसे कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागता जमीन से आसमां तक जिंदगी से मौत तक चांद से तारे तक से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। तो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर के लाइव स्टूडियो से, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ईद की महफिल। हाँ जी जनाब, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है ईद की महफिल प्रोग्राम व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा और साथ ही साथ हम ईद की महफिल में बहुत ज्यादा वाली ऐसी बातें करने वाली है जो कि आप लोगों के साथ होगी। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं या फिर आप फन करना चाहते हैं, ईद का आज दूसरा दिन है खैर से, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि भाई जान हमारे साथ एंजॉय करने वाले हैं। सो तमाम तो सुनने वाली समाधों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। और इसके अलावा आप लोगों को मेरी तरफ से हमारी पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक एक मरतबा फिर से। और साथ साथ आप दूसरा दिन है तो जाहिर सी बात है दूसरे दिन में आज का दिन मुझे ये लग रहा है कि लड़कों की जिंदगी का बहुत मुश्किल तरीन दिन होगा क्योंकि वो सिर्फ जितनी गर्मी है उस गर्मी के हिसाब में वो सिर्फ गोश्त बांटने में काटने में और ये तमाम चीजें करने में बड़ी मसरूफ है। तो आज का दिन जो है ना मुझे ये लग रहा है कि लड़कों के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। वैसे कोई बात नहीं जी, गोश्त काटिए और बांटिए और साथ साथ जो है एंजॉय भी कीजिए, हमारे साथ भी रहिए और ईद की महफिल में आप हमें ज्वाइन भी करते रहिए। तो अगर आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं, क्या तरीकेकार होने वाले हैं ये आप लोगों को बताएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये भी हमारे साथ शेयर करेंगे क्योंकि अगर आप ईद हो जाहिर सी बात है आप तैयार होते हैं, कहीं जाते हैं, कोई आपके घर आता है, तो इस सूरत हाल में ये होता है कि आप लोगों का खूबसूरत दिखना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जो चीजें जरूरी होती ना उनको बस कर दिया गया। तो अगर आप कहीं जाएं या फिर कोई आगे घर पे आए तो ये अच्छी बात है कि आप तैयार रहें, अच्छी अच्छी रहें, खूबसूरत रहें और मुस्कुराते हुए रहें। तो जनाब व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए ताकि आपकी खूबसूरती जो ना वो हमेशा बरकरार रहे। और साथ साथ यहाँ पर जी बिल्कुल आगे साथ बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट और साथ चाहिए होता है और क्या मांगते हैं आपसे, कौन सा मैंने आपसे ईदी मांग ली है बस जी आप लोगों की मोहब्बतें चाहिए होती है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर जो है ना बिल्कुल बहुत से बातें हैं मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा करते हैं कि हम ना ईद का पहला वाला गाना लगा लेते हैं प्रोग्राम में। ईद का गाना सुनते हैं और गाना सुनने के बाद हम जैसे ना वापस आते हैं तो बहुत ज्यादा वाली बातें जो कि आप लोगों के लिए है और बहुत ज्यादा आप लोगों के मैसेजेस जो कि हम शामिल प्रोग्राम रखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ मौजूद रहिए, हम आपके साथ मौजूद रहने वाले हैं। प्रोग्राम में फंड होगा, बातें होगी, एंटरटेनमेंट होगी और आप लोगों के साथ साथ जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र होने वाला है। तो ईद की महफिल प्रोग्राम सुनते रहिए, आपका हमारा साथ पूरे 3 बजे तक।

चक्री उठाने वाला चाहिए वाकई। ओके जी, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन सा गाना आप यहाँ पर इंजॉय करिए। और साथ साथ प्रोग्राम में जनाब आप हमारे साथ मौजूद हैं, जिसका नाम है ईद की महफिल, और ये स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है प्रोग्राम वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावे से। आपकी प्यारी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, और फैमिली प्रोग्राम होना चाहते हैं तो जनाब किस तरह आप हमें ज्वाइन करने वाले बताते। लेकिन साथ साथ मेरा ये दिल करा कि आज जरा मैं आप लोगों से पूछूं कि आज के दिन आप, आज का जो ईद का दूसरा दिन है, तो आप किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आपकी मसरूफियात है, क्या ऐसे काम है जो कि आज आप कर रहे हैं। बहुत से लड़के मुझे ये लग रहा है कि आज बड़े बिजी रहने वाले हैं। खैर, आज आप मुझे बताएं कि आज ईद का दूसरा दिन आप कैसे इंजॉय कर रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, और अभी तक आपने ईद का दूसरा दिन कितना एंजॉय कर लिया, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आधा दिन तो गुजर चुका है। तो बताइए जल्दी से, और शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे, कॉल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस, दीजिए अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8821 पर, अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 के ऊपर आप आ जाएंगे, और जी लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। आइए, वहां पर आपको हमारे लाइव पोस्ट मिल जाते हैं, जैसे आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर कर देते हैं। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, कहां से सुन रहे हैं और कौन कौन हमारे साथ है। और यहां पर आप मुझे ये भी बताते जाइए कि ईद के इस मौके पर जितने भी लोग हैं वो ये बताएं जरा कि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर चुके हैं, और अगर आप खूबसूरत हो चुके हैं तो बताइए जरा कितनी खूबसूरती आपको मिली है। जैसे ये बात हो, आप सारे लोग अच्छे से जानते हैं कि वाइट एज की जो लवली क्रीम है ना, ये इसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वाइट एज की जो लवली क्रीम है ये एक फेयरनेस क्रीम है। फेयरनेस क्रीम वो होती है जो कि नाइट क्रीमों से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। बहुत से लोग जो कि नाइट क्रीम नहीं लगा पाते हैं, नाइट क्रीम में आप लोगों को सूट नहीं करती, तो आप फेयरनेस क्रीम की जानेब आ जाया करें, और फेयरनेस क्रीम भी वो वाली आप लोगों के लिए तैयार की गई है जिसके अंदर ना सिर्फ आप लोगों को खूबसूरत बनाने की चीजें हैं, बल्कि इसके अंदर आप लोगों के लिए सनस्क्रीन भी एड की गई है। इस गर्मी के मौसम में अगर आप कहीं जा रहे हैं, खास करके मर्द हजरात, आप कहीं गोश्त देने जा रहे हैं, किसी भी ऐसे प्यारे इंसान को गोश्त देने जा रहे हैं जिसे आप चाहते हैं कि मुझे खूबसूरत दिखना है भाई, अगर मैं जाऊं तो गर्मी के मौसम में ना वो थोड़ी सी अच्छी नजर आए, तो आप व्हाइट एज की लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट एज की लवली क्रीम आप लोगों को फुल जो है ना वो खूबसूरत गोरा चिट्टा और पाला पाला बना देगी, आपकी स्किन ऐसे फुल शाइन करती रहेगी और आप प्यारे प्यारे लगेंगे। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम आप लाजमी इस्तेमाल करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगेगी, क्योंकि मेरी तो फेवरेट है। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर नसीर खोसो हमें बलूचिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं अगर इंसान खुश हो तो उसे बारिश की बूंदें हंसती और मुस्कुराते और परिंदे गीत गाते नजर आते हैं, उदास इंसान के लिए भी यही बादल गिरिया करते दिखाई देने लगते हैं। हम मौसम इंसान के अंदर होते हैं, हर मौसम इंसान के अंदर होते हैं, जैसा मोड हो वैसा मंजर होता है, तो मौसम इंसान के अंदर होता है, ये सही बात है। वैसे थोड़ी सी इधर उधर हो गई लेकिन बात समझने वाली थी कि चवंदा ना जी खुश तो जान खुश हुआ ही गाला है। अगर तव्हांजो दिल ठीक हूं तव्हांजो मूड सही हूं तव्हांखे हर चीज सही लगंदी है, पर अगर मूड ही सही हूं तो बस ज़ाहिर सी गाला है, मुंह ते 12 बजे ले हूंदा कुछ भी सुठो ना लगंदो। खैर, खुश हो हमेशा। अच्छा, रिहान अली हमारे साथ कहते हैं सलाम नंदी माई, वालेकुम अस्सलाम, साला खुश आयो। दादाला कहते हैं कि घेरों में भी जो शायद उन्हें ईद मुबारक, जिनको नहीं हम याद उन्हें भी ईद मुबारक, मासूम से अरमानों के मासूम से दुनिया, जो कर गए बर्बाद उन्हें ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, मैं भी ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। और आदिल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आयो जी, तमाम ॿुधायो, कहते हैं कि जेको तव्हांखे

बकरे नहीं लड़के जो है ना वो माशाल्लाह फुल कसाई वाले मूड में है, कसाई वाला मूड उनका ऑन हो चुका है, तो अच्छी बात है। अल्लाह पाक हम सब लोगों की, जितने भी लोगों ने कुर्बानी की उनकी कबूल करे कुर्बानी। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप हमारे साथ ज्वाइन करते जा रहे हैं, बिल्कुल आपके मैसेजेस बहुत सारे हम शामिल प्रोग्राम रखेंगे। टाइम हो जाता है जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानेब जाते हैं, तो उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। बने रहिए हमारे साथ, एंजॉय करते रहिए और शामिल प्रोग्राम होते रहिए। मैं जरा यू जाकर यूं वापस आती हूँ, तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। 88 नेटवर्क आप सुन रहे हैं ईद की महफिल, स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए, खूबसूरत होते रहिए।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: एलोवेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: कुकिंग प्रोसीजर्स हमें यूज नहीं करने चाहिए बिकॉज दे आर नाउ डेंजरस. ये चीज हमें प्रॉब्लम दे सकती है क्योंकि इतना ज्यादा फैट कंटेंट यूज हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए. कोशिश ये करना चाहिए कि ईद के दिनों में अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो ज्यादा हम बॉयल कर लें, ग्रिलिंग कर लें, रोस्टिंग, यू कैन इवन रोस्ट द मीट. उसके बाद आप बारबेक्यू आइटम्स को ज्यादा कंज्यूम करें, उनको डिफरेंट तरीकों से बेक करके, या फिर ऑयल अगर सालन यूज कर रहे हैं या सालन बना रहे हैं तो लेस ऑयल के साथ बना लें. उसमें फैट कंटेंट जितना कम कंज्यूम होगा उतना बेहतर होगा.
1: हेल्दी ईद, खाइए जरा संभाल के, सेहत के ख्याल से.
2: हेल्दी ईद.
3: समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज.

नहीं बनता. जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो गोश्त खरीद कर सके, और उन लोगों को ये लगता है कि भाई कुर्बानी की ईद आ रही है, तो क्या पता शायद कोई ऐसा इंसान हमारे घर आए जो कि गोश्त लेकर आए, और वो उनके बहाने जो है वो गोश्त खा सके. तो आप ये कोशिश किया करें, उन लोगों को जाने समझें, उन लोगों की तरफ अपना गोश्त भेजें जिन लोगों को वाकई जरूरत है. वो पूरा साल जो है ना वो ईद का इंतजार करते हैं, तो लाजमी इन चीजों का ख्याल रखा करें. और ये जो डिठ वाइठ वारा कम होता है ना, जेकी अजकल मानू खूब कन पया के थोड़ो इग्नोर करो, या गलत गाल हूं दिया है. तो चलें जी, ये बहुत ज्यादा वाली बातें हम बिल्कुल करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप कहां कहां से सुन रहे हैं ये भी मुझे बताते रहिए. और इसके अलावा जो है ना, हम आप लोगों के साथ जो है वो थोड़ा सा जिक्र करते चलेंगे कि ये जो प्रोग्राम स्पेशली आप लोगों तक पहुंचा जाता है वो टेश ब्यूरी प्रोडक्ट्स की जानिब से पेश किया जाता है. तो वाइट एश ब्यूरी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप लोगों को बताया जाए, तो वाइट एश ब्यूरी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं. जैसे कि आप लोगों को वाइट एश ब्यूरी प्रोडक्ट्स में ना हर तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कि वाइट एश ब्यूरी क्रीम मौजूद है, वाइट एश की फेयरनेस क्रीम मौजूद है, वाइट एश का साबुन मौजूद है, वाइट एश का फेस वॉश मौजूद है, और जनाब बहुत ही अच्छे अच्छे हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं. कि ऐसा नहीं कि आप लोग ये सोचें कि मैं तो ये प्रोडक्ट नहीं लगाता तो मेरे लिए क्या है, तो आप सब लोगों के लिए सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जो आप लोगों की बेसिक नीड होती है. तो बेसिक नीड को तलाश कीजिए, और आप कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं वो वाइट एश प्रोडक्ट्स में से सिलेक्ट कीजिए, देन अप्लाई कीजिए. आप लोगों को बहुत से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. तो इस्तेमाल करते रहिए और अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहिए. ईद पर सोने सोने लगी है, और जरा अगर कोई भी आपके घर आए तो फिर आपका जो चेहरा है वो रोशन होना चाहिए, और आपकी खूबसूरती जो ना वो मजीद बढ़नी चाहिए, कि ये आप डिजर्व करते हैं. ओके जी, इसी के साथ साथ हमारे पास गाने भी बहुत अच्छे ऐसी लिस्ट में मौजूद है, गाने सुनेंगे. लेकिन आप लोगों के मैसेजेस आते जा रहे हैं, तो मैसेजेस भी पढ़ूंगी, लेकिन एक मिनट जरा.

ॿई इहा ॻाल्हि त आहे बिल्कुलु वाक़ई वाक़ई हक़ीक़त आहे असां मञूं था अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी हो माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान हैप्पी ईद मुबारक जाना आपको भी मेरी जान ईद की बहुत सारी वाली मुबारकबाद और आप हमारे साथ फजीला मौजूद है बहुत शुक्रिया और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ नूरिस अंतोनियो भाई कहते हैं टॉपिक अदीम समंदर पर मौसम इंजॉय कर रहा हूँ करें जी करें करें करें मौसम इंजॉय करें सैयद फारूक हमारे साथ हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैडम आरजे सिद्रा मुस्कान ईद मुबारक आपको भी ईद मुबारक और जनाब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ और जनाब उसके अलावा मोहम्मद रिजवान है रिजवान जागीरानी फ्रॉम दुबई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिडो आज हम अबू धाबी अच्छा क्या बात है जबरदस्त इंजॉय कीजिए घूमिए खाइए पिए और ईद को जो ना फुल अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए किशोर भाई कहते हैं अदी आऊं टे ॾींहं खां ॻोठ में आहियां यकीन कयो शाम 6-7 बजे खां पोइ रूम खां ॿाहिरि निकिरंदो आहियां बाहि पई बरे बाबा ॿाहिरि उन्हनि खां पुछो जेके वीचारा जो अचनि था प्रोग्राम करण शाबस बि नथा ॾियो हिन वसंदड़ बाहि में ईंदी आहियां वाला ॾिसो था एफर्ट्स टेक करे या बंदी खे

तो वैसे सही बात है, और उन लोगों का भी क्या कहना जो भाई अगर बिला वजह ही जलते हैं तो क्या ही कर सकते हैं भला। खैर कोई बात नहीं, मत जला करें, इतना काले हो जाएंगे। ये भी हल हमारे पास मौजूद है, हम आपका इतना ख्याल रखते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि आप काले हो जाएं, हम ये चाहते हैं कि आप वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें ताकि आप गोरे गोरे हो जाएं। वो भले तहां सड़ंदा रहो पर फर्क न तो पे, बस तव्हांजी स्किन जेका न खूबसूरत थियण घुर्जे। ऐं तव्हां पंहिंजी स्किन ते इस्तेमाल कयो बाबा वाइटिश ब्यूटी क्रीम। वाइटिश ब्यूटी क्रीम जेका तव्हांखे इज़ीली किथां बि मिली वेंदी, तव्हां लालकाणे वारा आहियो त रेशम गली मां वञी वठी अचो, बाक़ी जेके जेके जितां जितां ॿुधनि पिया तव्हां पंहिंजे मार्केट मां वञी वठी अचो। अगरि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था त तव्हां उतां मालूमात कराए अचो, मिलन था त ठीक आहे, नथा मिलनि त पोइ तव्हां नंबर खे डायल कंदा हलो। जे नंबर ते तव्हां डायल करण खां बाद में न राबितो करण खां पोइ हिननि खे ॿुधाए सघो था त बाबा असांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल न आहिनि ही प्रोडक्ट्स, ऐं अवेलेबल कराइण घुर्जनि, बिल्कुल कराइण घुर्जनि, जे तव्हांजे लाइ आसानी थी वञे ऐं तव्हां वञी भॼंदा भॼंदा वाइट एज जा प्रोडक्ट्स वठी अचो। ठीक आहे न, सो वञी वठी अचो ऐं तव्हां नंबर डायल कंदा 03-15-799-0595। किशोर भाउ केरु थो चए बाबा बाइक ते ईंदा आहियूं, बाइक ज़िंदाबाद ईअं थो हुजे त पोइ गर्मी गर्मी छो करियां भला, सोचण वारी ॻाल्हि न आहे, सोचो नथा तव्हां बि थोरो, मां ई सभु ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधायां। वॾा थी विया हाणे तव्हां आख सिख। अरे सनाला बिरोही भाई हमारे साथ, वालेकुम असलाम, तव्हांखे बि भाई ईद जूं मुबारकूं हुजनि। मंठार अली बिरोही हमारे साथ, कहिड़े ईद जूं मुबारकूं हुजनिव तव्हांखे बि मंठार भाउ। ओके जी, नवीद अली हमारे साथ, ईद मुबारक टू यू और सिस्टर, आपका शो मैं बहुत अच्छे से सुनता हूँ, आपका शो अभी मोबाइल में आपको सुन रहा हूँ, जिस दिन आपका शो नहीं होता तो मैं परेशान हो जाता हूँ। नवीद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी मोहब्बतों के साथ हमारा शो सुनते हैं, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू थैंक यू। और यूनस अली खोड़ो हमारे साथ ही दौलत खोड़ो से आप हमारा शो सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम जी। और उसके अलावा जुल्फकार अली बोजदार हमारे साथ है लारकाना से, आपका भी वेलकम करते हैं। और नाज बलोच नाज बलोच भाई हमें थर्ड पार्कर से सुन रहे हैं, और आपने सब सुनने वालों को इतनी मुबारकबाद दी है, बहुत शुक्रिया नाज भाई। और लखमीर अबड़ू हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम सलामत। अच्छा, पोस्ट को आप लोगों ने लाइक और शेयर करना है, ये तो मैं भूल ही चुकी हूँ आप लोगों से कहना, तो पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, जब तक मैं नहीं बोलती तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप करते भी हैं, तो पोस्ट को लाइक और शेयर कर दें ताकि आप लोग जितने भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में लोग हैं और जो ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि भाई जान हम खूबसूरत कैसे हो सकते हैं, तो आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो खूबसूरती को बढ़ाते रहिए, खूबसूरत रहिए, और इसके साथ साथ हमारा ये जो प्रोग्राम है वो सुनते रहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में आप लोगों को इस तरह की बातें पता चलती हैं जो कि शायद आप नहीं जानते हैं। आपकी खूबसूरती हो, आपके चेहरे पर एक्नी हो, आपके चेहरे पर ये नहीं आपको समझ आता कि हम कौन सा प्रोडक्ट लगाएं, तो ये सारी बातें आपको हमारे इस प्रोग्राम में पता चलती हैं। तो हमारा प्रोग्राम सुना करें, उन तमाम दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें जो कि अपनी खूबसूरती के मामले में परेशान बैठे हैं।

अच्छा आदिल पूछ रहे हैं कि आपने मेहंदी लगाई है ईद पर? हाँ जी मैंने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई। वैसे ये उन लोगों की तो लय होती है जो खुद मेहंदी लगाते हैं, तो मुझे तकरीबन लोग ये कहते हैं कि भाई असां के तव्हां खां थोड़ी जेलसी थींदी आहे छो त तव्हां पाण ॾाढी भली भली मेहंदी हणंदा आहियो, असां खे न हणंदा आहियो। तो ये है भाई उन लोगों की लय है जो खुद मेहंदी लगाते हैं। तो मैंने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई है खुद को। और मुझे ये लग रहा है कि इस मरतबा मेरी मेहंदी ने कलर भी बहुत अच्छा किया है। इतना ज्यादा कलर शायद कभी मेरी मेहंदी ने किया हुआ जो इस मरतबा मेरी मेहंदी ने कलर किया है। अब पता नहीं क्यों इतना कलर किया है ये नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा किया है। वैसे अच्छी बात है, लड़कियां तो इतने में खुश हो जाती है कि उनकी मेहंदी ने कलर अच्छा किया है। हाँ जी देख ले बस, लड़कियां इतनी मासूम होती है सच्ची।

अच्छा दर्दे दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहती हैं चंदा, आप कैसी हैं? ईद का दूसरा दिन मुबारक आपको भी मेरी जान कहती हैं। आप लोगों की तरफ क्या चल रहा है? हमारी तरफ तो गोश्त चल रहा है, गोश्त इधर से गोश्त, उधर से गोश्त, इधर से गोश्त, उधर से गोश्त, तो गोश्त गोश्त चल रहा है। आपके यहाँ क्या चल रहा है? और कहती हैं कि कौन सा कलर पहना है आज मेरी प्यारी चंदा ने? मैं सोच रही हूँ ये कौन सा कलर है, शायद इसको सी ग्रीन कहते हैं, हाँ शायद। क्योंकि पहले ये होता था कि मेरे पास कलर्स की ना चॉइस नहीं होती थी, मैं सिर्फ काले कपड़े पहनती थी, काले कपड़े, काले कपड़े। लेकिन अब ये है कि मैं, मुझे समझ आ गई है कि भाई मैंने तरह तरह के कलर्स जो है ना वो ट्राई करे, और मैं जैसे जैसे तरह तरह के कलर्स ट्राई करती जा रही हूँ, मैं कहती हूँ ये कलर तो मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, मैंने पहले क्यों नहीं पहना। बिल्कुल एक नया सा कलर मैंने पहना है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा किशोर भाई कहते आऊं भी मेहंदी लगाई दो आया, सच्ची बुधा कंखे लगाई तो मुबारक। ओके जी, ये एस डी मजीदानो भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी मजीदानो भाई, तुम के वेलकम चाहूं था। अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं सिद्रा आज रिजवान लड़का नहीं आया, तो वो आज बिजी थे, वो तो मैंने कल ही कहा था कि वो आज वाले प्रोग्राम में शायद ही नहीं आ पाएंगे। मिस कहीं ना आप उनको, मुझे पता था। चाचा भी कह रहे हैं कि असा भी कल डाडी निंड कई आ, हाँ ना मुझे खबर आए, मतलब तुम डेली अगर निंड कर, पर ईद वे डी निंड लेवल ही अलग है, उन निंड जो कुछ मजो ही अलग हों।

0: Sabah sunum geliyor.
1: सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो त 1998 में कागे जे पहाड़नि ते कामयाब एटमी धमाका करे स्टेट जे ख़ुदमुख़्तियारी ऐं दिफ़ाई तवाज़ुन हासिल कयो। असां मुस्तक़बिल जे चैलेंजेस खां आगाह आहियूं ऐं मुंझण जी सलाहियत रखूं था। ऑपरेशन बुनियाद महसूस में भारतीय जारियत जो मुंहं टोड़ जवाब ॾिनो। असां ज़िमेवार ऐं अमन पसंद क़ौम आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो चवणु आहे त जोम तकमील पाकिस्तान जी तारीख़ जो अज़ीम ऐं फ़ैसिलाइतो ॾींहुं आहे। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज़ शरीफ, डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान ऐं डॉक्टर समर मुबारक खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। अठावीहें योम तकबीर ते हथियारबंद फ़ौजुनि जे सरबराह जूं क़ौम खे वाधायूं ऐं एसपीआर मजिद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ऐं नेवल चीफ क़ौम खे वाधायूं ॾिनियूं। पाकिस्तान एटमी ताक़त बणिजी उभरियो। उन ॾींहं ते पाकिस्तान जो ॾखिण एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल थियो। ही कामयाबी पाकिस्तानी क़ौम पाक फ़ौज जी क़ुर्बानीुनि जो समर आहे। पाक फ़ौज मुल्क जी सलामती, खुशहाली ऐं इस्तेहकाम जे लाइ पुरज़म आहे। पाकिस्तान जी दिफ़ाई स्ट्रेटेजिक सलाहियत मुक़दस क़ौमी अमानत आहे।

जेको शहर वेनेज़ुएला सां सा कयो उहो ईरान सां करे पिया सघूं, ओमान न वञो दुरुस्त न कयो त ओमान खे बि तबाह करे छॾींदासीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिकी टीवी खे इंटरव्यू। सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त पाकिस्तान जी दरख़्वास्त ते ईरान ते हमला रोकिया, अबना हरमुज़ ते हाणे कंहिंजो बि कंट्रोल न हूंदो, ईरान वटि डील खां सवाइ ॿियो रस्तो न आहे। यूरेनियम छॾण जे बदिले ईरान तां पाबंदियुनि में नरमी न कई वेंदी, नई ईरान खे एटम हथियार हासिल करण ॾींदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिम अली बहितरीन शख़्सियतूं आहिनि। ट्रम्प जे दबाव में न ईंदासीं, आबदा हरमूज़ जो कंट्रोल ईरान वठी रहंदो। ईरानी पार्लियामेंट जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जे सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी जो ट्रम्प जी धमकीअ ते रद अमल। सदस्य वलायत ईरान खे यूरेनियम रसा जो हक़ हासिल आहे, पाबंदियुनि में नरमी जो मुतालबो जायज़ आहे। ईरानी क़ौमी सलामती काउंसिल जे नायब सेक्रेटरी अली बाकरी जो चवण आहे त यूरेनियम ज़खीरनि जो मामिलो अमेरिका सां हलंदड़ ॻाल्हियुनि में शामिल न आहे। आबदा हरमूज़ खोलण बाबति अञा ताईं अमेरिका सां इतफ़ाक़ नाहे थियो। जंगबंदी बावजूद अमेरिका जा ईरान ते ॿीहर हमला, फौजी हंधनि खे निशानो बणाइण जी दावा। अमेरिकी इख़्तियारनि में चवंदा ईरान जे फौजी हंधनि खे निशानो बणायो वियो। हमलनि जो मक़सदु अमेरिकी फ़ौज ऐं आबदा हरमूज़ में वापारी जहाज़नि खे ख़तरनि खां महफ़ूज़ बणाइण आहे। ईरान पारां बि जवाब में अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणाइण जी दावा। ईरान जे पासान इनकलाब जो चवण आहे त जवाब में अमेरिकी फ़ौजी अॾे खे निशानो बणायो वियो, इन ई अॾे तां ईरान ते हमिलो कयो वियो हो। रूसी ख़बर एजेंसी मूजिब केल सां भरियल अमेरिकी जहाज़ आबदा हरमूज़ मां गुज़रण जी कोशिश कई, पासारनि इनकलाब जहाज़ ते वार्निंग शॉट फायर करे जहाज़ खे वापसि वञण ते मजबूर करे छॾियो।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

ओके जनाब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। हाँ जी आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और लाड़कना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं ईद की महफिल। और जनाब ईद की महफिल प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, अगर इन प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो आप लोगों को पहले से मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए लिसनर्स हमारे साथ मौजूद है जिनको नहीं होगा पता कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये किस तरह के प्रोडक्ट्स है, कौन से प्रोडक्ट के अंदर अगर आप इस्तेमाल करें तो क्या चीजें एड की गई है। तो आप लोगों को बताते चलें, सबसे ज्यादा जरूरी वाली बात ये होती है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये चीजें आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट्स तैयार कैसे किया गया है। अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है और सेंसिटिव स्किन के ऊपर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल डाले गए होते हैं तो फिर आपकी स्किन जो है ना वो खराब होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसा किया करें, उन्हीं प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करें जो प्रोडक्ट आपके ऑल स्किन टाइप के लिए हो और जो लाइट वेटेड फार्मूले के साथ तैयारशुदा हो और जो नेचुरल अज्जा से तैयारशुदा हो। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में और जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि लाइट वेटेड फार्मूले के साथ तैयारशुदा है और एक मजे की बात की ये नेचुरल अज्जा से तैयारशुदा है और एक मजे की बात की ये ऑल स्किन टाइप के लिए। तो इतने जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अगर आपके लिए मौजूद हैं, आपके पास हैं, तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से नाम लेकर तलब कीजिए और आपको मिल जाएंगे इजीली। अगर नहीं मिल रहे तो उसका हल भी आपके पास मौजूद है कि आप क्या करते हैं, नंबर के ऊपर आता करते हैं और नंबर है जनाब 03-1579-0595। ओके जी, तो जल्दी जल्दी से नंबर डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए। और खूबसूरत दिखना ये हर किसी की ख्वाहिश होती है और खूबसूरत रहना ये हर किसी का हक होता है। तो खूबसूरत रहिए, खूबसूरत दिखिए और इस्तेमाल करते रहिए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसी के साथ साथ आज ईद का दूसरा दिन है जनाब, ईद का दूसरा दिन है और यहाँ पर बिल्कुल जी बहुत सारे लोग नोने पुत्र बनकर काम कर रहे होंगे या नोने पुत्र बनकर आराम कर रहे होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आप तैयार शैयार होकर या तो काम कर रहे होते हैं या तो फिर आप आराम कर रहे होते हैं, ये दो ही सूरतें हमारे पास होती हैं। आप कौन से लोगों में शुमार होते हैं ये भी जरूर बताइएगा और साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं 888-1 के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ हैं पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि आप बहुत सारे लोगों तक हमारी पोस्ट को पहुंचा पाए और उन बहुत सारे लोगों को पता चल सके कि जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। और यहाँ पर हम दूसरे घंटे में आ चुके हैं तो जनाब पैनल की जाने में देखा तो बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठा हो चुके हैं, तो पैनल की जाने बातें और बहुत सारे मैसेजेस पढ़ लेते हैं। बाकी जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है वो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। ओके जी, सो ये हमारे साथ हैं जी नूर एंटोनियो भाई फ्रॉम ओके जी, आप हमें सुन रहे हैं कहते हैं। अच्छा चलिए, भाई ने गाने की फरमाइश कर दी है, बिल्कुल आपकी पसंद का गाना लगा देंगे डेडिकेटेड स्पेशली आप ही शनूर हदीसा आसिम एंड नाया, आपके नाम कर दिया आपने गाना। और उसके अलावा दूसरा मैसेज करते हैं चाहल एंड अदी तमहानजा, अदी आपका भाई आपसे कितना दूर बिठा है फिर भी आपके साथ है। बिल्कुल जी मोहब्बत हूँ तवां असा सा गड हुंदा हो, ये तवां जो मोहब्बत जो इज़हार आहे ऐं अलाह करे ये मोहब्बत हमेशा ईअं ई कायम दायम रहनि। और उन खां अलावा जेको आहे न हिते गाना मूं वटि भला भला मौजूद आहिनि त असां गॾो गॾु गाना बि ॿुधंदा हलंदासीं। इरम कहती है मैं इरम हूँ अम्मी के घर से दिलबर आपी, मेरी सिस्टर भाभी की फरमाइश पर प्लीज सॉन्ग लगाइएगा असा कंबर वारा वाइस बाई फाइज वाली। चलिए मैं कोशिश करूंगी आपकी पसंद का गाना लगाएंगे, जैसे मैंने आज कोशिश करी थी, कल जुमा है तो कल मेरा प्रोग्राम नहीं होगा तो मैंने ये सोचा कि जितने भी अच्छे अच्छे ईद वाले गाने तो वो मैं आज के प्रोग्राम में लगा लूंगी, लेकिन ऐसा है कि आप लोग जब फरमाइशें आ जाती है तो फिर मैं थोड़ा सेकंड हो जाती हूँ तो

ओके जी, क्या बात है, ये मेरे साथ माधुरी टॉपिक। डियर स्वीटी, कहीं नहीं जाना, गर्मी है और इवनिंग को प्लान भी है जाने का डियर हस्बैंड के साथ। चलें जी, जाइएगा। सलाम टू माई स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सभी सुनने वाली लड़कियों को। और फजीला हमारे साथ माधुरी, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। और शाम के टाइम जाइएगा जी घूमने कहीं बाहर, वैसे उन जगहों पर नहीं जाइएगा जहाँ पर काफी ज्यादा रश होता है। तो जी हमारे साथ ही, अस्सलाम वालेकुम, मैं लेला परी फ्रॉम कंबर। आप कैसी हैं सोनी? मेरी और बाजी की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत ज्यादा ईद की मुबारकबाद हो। और उसके अलावा ये है जी बाजी सिद्रा, आई होप कि आप फाइन होंगी। नाइस सेकेंड डे ऑफ ईद मुबारक एफएम की टीम को। मिरपुर खास से उम्मीद अली लाशारी है। सलाम राशिद लाखो, अदील अबरो, लाल मोहम्मद, सोहबत लाशारी, जोवन कुमार एंड यू। ओके जी, क्या बात है, भाइयों को वेलकम करते हैं। और इसके अलावा है जी बाजी सिद्रा, आपका शो वेरी वेरी नाइस है। हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, दोस्तों से मिलने गया हूँ। मीरपुर खास से उम्मीद अली लाशारी, सलाम चोवन कुमार, रंजन फरहान कोरी, कुर्बान खास के लिए अदील अबरो, खालिद जुनेजो एंड यू। ओके जी, बहुत शुक्रिया भाइयों को। इरम कहती है मेरी प्यारी आप ही कल मेरी। अच्छा, यानी कि कल ही आपने कुर्बानी कर ली। चलें ठीक है, बहुत बढ़िया। और चाचा खालिद आप हमारे साथ हैं। वैसे गानों चाचा मैं कोशिश कदम ताजो हलाया कल वारो, बिल्कुल गानों तवाजो हलायो सी, हलायो न हो सी, मां रखियो पर वो गानों थोड़ो स्लो हो, सोन वजह से असा जो बो गानों लगायो सी। थोड़ो थोड़ो मतलब फास्ट गाना बुधण जो मजो ही पांजो हों। सो थकेल गाना जगह डेली बेसिस से वैसे ही बुधंदी लास्ट में, पर थोड़ो ईद के डी थोड़ो थकेल गाने का परहेज कर, डॉक्टर ने मना किया है। अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साइमा मीर, माशाल्लाह मक्खन जैसी आजे मुस्कान, आप कैसी? बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो तुम्हें। दुआ है रब्बे कायनात से अल्लाह पाक आपको ऐसी बहुत ईदें नसीब करे, इस दुनिया की हर खुशी नसीब करे और अम्मी जान का प्यार साथ सदा सलामत रहे। आमीन आमीन आमीन। और ईद मुबारक प्यारी, लव यू, मिस यू, लव यू टू मेरी जाना, और आपको भी मिस यू टू। ईद की बहुत सारी मुबारक हो आपको भी। और लीला कहती है मेरी तरफ से सर को और रुखसाना और सीमा को ईद मुबारक, और सब सुनने वालों को भी ईद मुबारक। ओके जी, लीला परी आपको वेलकम करते हैं। मकसूद मला कहते हैं सिद्रा मुस्कान सुबह आपको ईद मुबारक। चले चले, ये भी ठीक है, हमने कबूल कर लिया। बहुत शुक्रिया मकसूद मला, आपको वेलकम करते हैं। और ये हमारे साथ है सिद्रा। अच्छा, ये सकलीन अब्बास हमारे साथ है। आप कैसी? उम्मीद है कि अच्छी होंगी जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सदका पंचतन पाका। ओके जी, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी दुआएं देने के लिए। और ये मौलाना इस्लाम मदद बाजी आपका बड़ा ब्रादर है, ऐसे में सुनकर जल्दी से शो में शामिल करें। व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम में अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं मेरा हक ज्यादा है। जी जी बिल्कुल, आपका हक ज्यादा है। आपका मैसेज जब भी आएगा फट से शामिल कर देंगे, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। और क्या कहते हैं सदाकत हुसैन मीरानी साहब बचल शामियानी सखर से आप हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और ये कहते हैं बाजी ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। और बाजी हम गोश्त बांट कर करके थक चुके हैं, अब आप शायद आराम कर रहे हैं। लाड़खाना से इमरान अली ब्रोही हमारे साथ हैं, क्या बात है। वैसे लड़कों की इस वाली ईद जो है ना, ये वाली ईद लड़कों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि लड़कों को सिर्फ यही काम होता है गोश्त बांटने वाला काम। बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं गोश्त बांटने। शाबाश दवाला। ओके जी बिल्कुल, ये खैर दो से तीन दिन हैं जिनमें आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, बाकी तो आप सारा साल रेस्ट ही कर रहे होते हैं, तो काम किया करिए, अच्छी बात होती है। अच्छा, ये फिरदोस भाई कहते हैं हैप्पी ईद बाजी, सोचा था इस बार बहुत ज्यादा गोश्त कलेक्ट करूंगा, पूरा साल खाऊंगा, लेकिन फ्रिज खराब हो गई, ये है अपनी किस्मत। अरे भाई फिर आप ऐसी सोच रखती नहीं, मैंने तो पहले ही बोला कि हम जो सोचते ना वो होता नहीं है, तो इसीलिए बस आप ऐसा सोचें कि आपने जो गोश्त कलेक्ट किया है ना वो उन लोगों में बांटे जिन लोगों को जरूरत है, अच्छी अच्छी लोगों में, जो कि भाई ऐसे लोग हैं जिनके घरों में गोश्त कम बनता है, वो गोश्त खरीद नहीं कर पाते हैं, तो उनको आप गोश्त जी
کیجیے, بانٹیے گا, کلیکٹ مت کیا کریں. پورا سال آپ گوشت کھا کر کیا کریں گے؟ آپ خرید کریں گے اگر آپ کی اتنی حیثیت ہے تو. یہ سارا گوشت تو آپ کلیکٹ کر کے رکھتے ہیں نا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیے اللہ نے آپ کو جو ہے نا سزا دی, پہلے سے آپ کی فریج خراب ہو گئی. تو یہ بانٹ دیجیے پورا گوشت اور خود بھی کھائیے, آس پاس کے لوگوں میں بھی بانٹیے تاکہ سارے لوگوں کے گھروں میں گوشت بنے اور سارے لوگ خوش رہیں. سائمہ میں کہہ رہی ہوں ماشاء اللہ سدرو پیاری, میں تو عید اپنے گاؤں میں منا رہی ہوں, آج خیر سے قربانی بھی کر دی, ابھی آپ کے پاس آ گئی شو میں, شو مست ہے, ایک اور مبارک ہو. ہاں جی ہاں جی, بہت شکریہ. اور کہتی ہے نگت ناز پلے کیجیے گا, مکھے پیسے نہ کھپن تو جو پیار گھر جائے جائے بدا قسم دے. اچھا یہ ہمارے ساتھ ہے, سلام بہنا عید مبارک ٹو یو. وعلیکم السلام پیارے بھائی, آپ کو بھی عید مبارک ہو. اور یہ والا گانا میں نے لگانا تھا اور یہ والا پلے ہو گیا, چلے یہ والا گانا ہم سنتے ہیں. یہ گانا بڑا ہی مست ہے, یہ ترکی سانگ ہے جو کہ عید کا گانا ہے.

अच्छा ये हमारे साथ है सलाम भाई ना, ईद मुबारक हो बाजी। बस आपने इतना मैसेज किया, अपना नाम नहीं लिखा, सो मेरे प्यारे भाई आपको वेलकम करते हैं थैंक यू के साथ। और बाजी सिद्रा आई होप कि आप फाइन शाइन होंगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप चौवन कुमार हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू, आपको वेलकम करते हैं दोबारा से। मुनव्वर मुगल हमारे साथ मीरपुर खास से, कहते ईद मुबारक दरा मुस्कान अल्लाह करे। अच्छा कहते अल्लाह करे मीरपुर खास के आज भी आपकी तरह प्रोग्राम करने लग जाए, शायद उनको मेरा प्रोग्राम पसंद नहीं आता, तो ये दुआ आप शायद ना करें, बस आप लाड़कना से मेरा प्रोग्राम सुना करें। बहुत शुक्रिया जी मुनव्वर मुगल। और बाजी सिद्रा आई होप कि आप फाइन शाइन होगी। जी जी चौवन कुमार भाई, आपने इतने सारे मैसेजेस एक ही मैसेज को बार बार शेयर कर दिया है, बहुत शुक्रिया। शायद लगता है आपकी ईदी काफी सारी जमा हो चुकी है, जो कि आप पैनल पर मैसेज करके थोड़ी सी शायद वेस्ट कर रहे हैं। वेल आपको वेलकम करते हैं। अच्छा ये हमारे साथ हैं जी वफा अब्दुल गफार खास के लिए फ्रॉम न्यू जतोई, आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो, आपको और आपकी पूरी टीम को। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक हो। लीला परी कहती ईद के तीन ही दिन, अच्छा तीसरे दिन सर को आना चाहिए, जुम्मे के दिन। अच्छा चाचा कहते हैं एक और मुबारक, वो किसकी, वो प्रोग्राम की मुबारक रही है, वो काफी दिनों के बाद आई ना, इसी वजह से शायद आप कुछ और ना समझे इसलिए मैंने वजाहत दे दी।

ओके जी फुल जी स्टेशन खां फौजी पठान खान खोसो है सिदरा छोकरी ॾाढो किलो था घट किलो माण्हू नज़र हणंदव हा माण्हू नज़र हणंदा आहिनि मूंखे पर पोइ बि मां न मुड़ंदी आहियां ॾिसो त मां केॾी बिल्ली आहियां अदा दादा भला ॿुधायो त गोश्त खां न न बाबा गोश्त एतिरो न खाईंदासीं थोरो थोरो खाईंदासीं ओके जी बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आप हमारे साथ मौजूद हैं नूर सिंतनियो भाई हमारे साथ है थैंक यू सो मच नूर सिंतनियो भाई काले जुड़े जो चाचा खाले थे कहते मेरे पास चले आपको बस्ती तो नहीं चलता ना समझा करे

0: फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो हल्का कपड़ा पायो मथो ढके रखो उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो वधिक पानी पियो महफूज रहो ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

ये मेरो मर बचो बेरो दोस्त से बड़ी फरमाश ककर खान बहादुर खान मरी नजीर अहमद मरी आई लोसन कमरानी मीरजान मरी कराची गगर फाटक खान कुर्बान मरी बरकत मरी इब्राहिम मरी सकन कारे सर न्याजल मरी तारक मरी हुसैनैत बकवादी छाए जो हर आशिक के पंजो महबूब बणंदो आ आशिक बाजे वारा आशिक तो मुजा जानी सफा गुलाब जो गुल लगो पियो ही परसी छा तो चए

0: की चटपटी खास
1: गरम मजेदार है,
0: खाना तैयार है,
1: खाना तैयार है। ईरानी कोबेत कबाब अजसा नोट कर लीजिए, गाय का कीमा आधा किलो, अंडा एक अदद, टमाटर चार अदद, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, प्याज पिसे हुए दो अदद। ईरानी कोबेत कबाब बनाने की तरकीब कुछ यूँ है, नमक, काली मिर्च, पिसे हुए प्याज और एक अंडा फेंट कर कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर लें और रात भर के लिए फ्रिज में रख दें। लोहे की बड़ी सीखों पर कीमा लगाकर उसको कबाबों की शक्ल दें और दोनों साइड्स को 5 मिनट तक बारबेक्यू पर पकाएं। एक सीख पर टमाटर प्रो कर उनको भी बारबेक्यू पर कुछ देर पकाएं। अगर बारबेक्यू की सहूलत मुयस्सर ना हो तो प्री हीटेड ओवन में कीमे के लंबे पतले पोर्शन बनाकर एल्युमिनियम फॉइल पर रखें और हाई टेम्परेचर पर ग्रिल कर लें। कबाबों और टमाटरों को सीखों से उतार कर चावल या नान के साथ पेश करें। लीजिए मजेदार ईरानी कुबेत कबाब तैयार हैं।
0: खाना तैयार है,
1: गर्मा गर्म है, मजेदार है,
0: खाना तैयार है,
1: खाना तैयार है।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: हर दिन हर पहर।

0: अच्छा बाजी, अच्छा ये हमारे साथ हैं सखत हुसैन मीरानी साहब, बच्चल शाम यानी सखर से। क्या कहते हैं बाजी, आपने क्या मेरा SMS डिलीट कर दिया? भाईजान पैनल पर मैसेज डिलीट नहीं होता है, तो अगर मैसेज देर सवेर शामिल किया जाएगा प्रोग्राम में, थोड़ा सा सब्र कर लिया करें, इतने सारे लोग होते हैं तो भाई मैं थक जाती हूँ किस किस के मैसेज पढ़ूं। और ये शोनी हमारे साथ कहती है आपीजान मैं भी आ गई आपके शो में अपने। अच्छा अच्छा कह रही है कि मैं अपने रूम की AC बंद करके आपका शो सुन रही हूँ, क्योंकि AC चलता रहेगा तो मुझे नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी तो फिर आपका शो कैसे सुनूंगी शो के बाद फिर से ऑन करके सो जाऊंगी। हाँ ये अच्छा काम है वैसे आप जो करते हैं कि मेरा शो सुनने के बाद आप सो जाते हैं। और इरम कहती है इसे जानी, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुनव्वर मुगल कहते हैं मीरपुर खास से VIP शो है आपका, मैं शौक से सुनता हूँ, ईद मुबारक सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी मुनव्वर मुगल की जानिब से, और आपको भी ईद की बहुत सारी मुबारकबाद हो। वैसे आप शो सुनते हैं पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे हैं तो आपको दिल से वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जा रहा है। और ये हमारे साथ जी तो फिल सजरानी का गाना आने वाला है प्रोग्राम।
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: ない。पर अगर मुंह या शे भी नोटिस कई है काफी सारा मुखी भी साल थे इन इदारे में कम करने तो कुछ अड़ा मानू हुंदा है जे की सोचिना है तो बाबा बेन की तमा अगर ता का कोई नंडो आ सीनियर तमा आयो तो तमा जी वडी अख होजन गुरजे तमा उनन की अगर एप्रिशिएट नथा गए तो तमा उनन ती जको ना तंस वगैरह भी ना कयो सो वडो अगर वडो मानू जको ना जी वडी नजर होजन गुरजे मुजी या सोच हुंदी आ अगर मुखा को नंडो हुंदो तो मा उनके एप्रिशिएट कदम तो अगलो इंसान जको ना वो खुश थी करे ना सठो कम करे पर अगर वडो ही चवंदो तो ना ही तो थोड़ो मतलब ही थिंदो यार वडे मानू ने तो वडी अख होजन घुर्जे असो हर को पांजे हिसाब से सही कम करी पयो मां मतलब ता दिसंदा हुंदा मां हते वेई करे के जो भी शायद जिक्र न कनी आ प्रोग्राम में जो तो मुखे लगंदो आ त न करन घुर्जे
1: सदी दुनिया के खबर आ त दिल खबे पासे दे
0: पर मु पाण भी बुधो आ एक बच्चा करे त मुजे बारे में के चयो ई मु पाण बुधो आ पर अलहमदुलिल्लाह माण्हू जो सपोर्ट आहे माण्हू जी मोहबत हूंदी आहे जंहिंजी वजह सां मूंखे लॻंदो त हा बाबा असां बि कुझु आहियूं शायदि अच्छा साइमा मीर हाँ कहती है तुम्हें पता है 6 साल पहले आज के दिन आज का ही वो दिन था मेरी पहली ईद थी तुम्हारे साथ आज भी याद है बहुत ही मैं मौज मस्ती के साथ गांव में तुम्हारा शो सुनती थी आज भी आपका प्यारा आवाज आपका प्यारा अंदाज आपकी मीठी आवाज आज भी लाजवाब है मौला आपको खुश रखे सेहत याब करे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे आमीन सुमामीन थैंक यू सो मच साइमा मीर वैसे वाकई काफी टाइम से आप मेरी लिसनर है और काफी टाइम से आप इसी मोहब्बत चाह के साथ मेरे साथ मौजूद है और साइमा मीर कहती ओए प्यारी ये तो बताओ मैंने बता दिया इरम कहती दिलबर आप ही आज पहली बार मेरी सिस्टर भाभी ने फरमाइश की है तो गाना लाजमी लगाएगा हम इंतजार करें बिल्कुल जी बिल्कुल आपकी फरमाइश भी लिस्ट में मौजूद है आप बस थोड़ा सा सब्र कीजिए अच्छा मकसूद मला कहती आप जा रही हैं सिद्रा मत जाए ना भाई मेरे को जाना पड़ेगा फुल जी स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो भाई है सिद्रा सची बुधायो हाँ भाव मिड़ई मिक्स मतलब कहते सिंधी कहते उर्दू कम वाले पे हलायो से अच्छा सोनी ठीक है तमा खैर सा वो बाबा इंजॉय कयो पांजी ईद उन अलावा जी फकीर राहिब माशूक मेमन है मिठल मेमन आसिम मेमन मुनीर मुनीर मोलाई बहरिया सिटी कोट बहादुर सॉन्ग सोना पंजी अखिन के झल तू यो गानो वरी इंशाल्लाह ताके बे प्रोग्राम लेना सो जो प्रोग्राम जो वक्त आ ना वो भी खत्म थेण वारो है आई तमा थोड़ो लेट सा आया प्रोग्राम में हे मैसेजेस मुझे प्रोग्राम में मतलब मुखे थोड़ो चरियो करे छदी अन्ना ताई पैनल ते मैसेज लंदा कमेंट्स जी तरफ तमा आई को ना सो अंसर अली भाई भी हमारे साथ है सिद्रा मोलाई प्ले कर पैसो डिठो थी चरियो थी वयो आ मोलाई जो गानो बिल्कुल हलाईंदासी पर अजु मता ना हली सके सो नेक्स्ट प्रोग्राम में हलाईंदासी और फिर दोस्त भाई कहते बाजी अच्छा ये आपका मैसेज था सही से नाम लिखा करिए अपना भाई और विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो भाई हमारे साथ है वेलकम जी प्यारे अली भाई कहते बाजी नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं अंसर अली कहते बाजी पहले अलाय छा चयो मकसूद कहते नहीं नहीं सच्ची बोल रही हूँ अल्लाह सच्ची दी जवाब और गुलाम शबीर तुनियो भाई फ्रॉम कुंबर अस्सलाम वालेकुम आपी गुड आफ्टरनून एंड ईद मुबारक शो इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थैंक यू थैंक यू थैंक यू

0: मेरे सुनील भाई हमारे साथ मौजूद है, शायद आप हमें इंडिया से सुन रहे हैं। आपने हिंदी में मैसेज कर दिया है, सो ये तो मुझे शायद हिंदी सीखनी पड़ेगी तभी मैं आपका मैसेज पढ़ सकूंगी। सो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है सुनील, आपको वेलकम करते हैं।
1: या गाला मना

अच्छा आशिक अली चांडू भाई हैं, कहते मैडम एफबी के एसएमएस पढ़ोगी आप? हाँ जी बिल्कुल पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, सब सब। और उसके अलावा दर्द दिल कहते मैंने, अच्छा सच्ची बताए। अच्छा आदल आपका भी बहुत शुक्रिया, इतने सारे आपने कमेंट कर दिए हैं। अमानुल्लाह टंगड़ भाई हमारे साथ है नौशरो फिरोज से, आप शो सुन रहे हैं, शो उम्दा है आपका, ईद मुबारक हो, आपको भी ईद मुबारक हो कहते हैं। मैंने तो बोला था रिजवान साहब को कि आप टाइम निकाल कर आइएगा मेरे प्रोग्राम में, लेकिन उन्होंने बोला कि आज मुझे काफी जो है ना वो काम है तो मैं आज नहीं आ सकता, इसी वजह से वो आज नहीं आ सके। लेकिन ये एक मैं ही हूँ कि उनको कहती हूँ कि भाई आ जाएं आप मेरे प्रोग्राम में, लिसनर्स आपको याद करते हैं, तो वो जो है ना वो बस ईद पर आते हैं शायद मेरे साथ। मैंने उनको कई मरतबा बोला कि हम एक डुएट शो करें, लेकिन वो नहीं मानते। अच्छा हजार खान भाभी से सगड़ मौजूदा, हजार खान भात आज मोहब्बत हूँ। इमरान खान रुख से सगड़ मौजूदा है, इमरान भात आज भी मोहब्बत हूँ आए। किशोर भाई कहते अदी हिन गर्मी वारे, हाँ बिल्कुल मां यहाँ पर कम कम हों न मतरे तो तवे चवान थी हों को जो डी तते में तवे डी तते में अच्छे वरी प्रोग्राम करे।

बिल्कुल जी बिल्कुल, तव्हां वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो पिया तॾहिं तव्हां सोणा थी विया आहियो। अगरि तव्हां वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पिया त मूंखे ॿुधाईंदा हलो किथे किथे अवेलेबल न आहे त तव्हां अवेलेबल करायो। हुन सां गॾोगॾु डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बि तव्हांजे एरिया में हुजणु ज़रूरी आहे। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बि तव्हां लॻायो जीअं तव्हां अञा वधीक सोणा थी वञो, समुझो था। सो मर्द मायूं सभु लॻाए सघनि था। ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे, नेचुरल अज़ा सां तयारु थियल आहे। बबल लॻायो जीअं सोणा थी वञो, सफ़ा सफ़ा सोणा। हुन खां अलावा जेको आहे न सो ॿिए लाइ कहिड़ी ॻाल्हि पई कयां तव्हां सां। अच्छा, पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो अगरि अञा ताईं तव्हां नाहे कयो।

अच्छा चाचा खालिद कहते हाँ अमाजो शो ऑस्ट्रेलिया इंडिया में भी हले पयो चंदा इो थई लेडी जो कमाल यस चेरी चेरी लेडी लेडी जका ना पावरफुल हुजन घुर्जे लेडी जका ना उहा स्ट्रांग हुजन घुर्जे उन खा अलावा जको ना ही लास्ट ट्रैक मु लगायो थम किशोर भाई कहते अदी अमा वट लाइट वने तो नेटवर्क वेंदो आ इो इशू ना इलाही टाइम का हले पयो लाइट वई नेटवर्क वयो हलो मां सोचा पर गोसा वटा पर लगो वाले सबनी वट इयो कमा फोजिया सुमरो जे गाने जी फरमाइश मुझे प्रोग्राम में इलाही सारा लिसनर करना है फोजिया सुमरो जो ही वारो ट्रैक मु लिस्ट में लगायो है जेको असा सब ली करे एंजॉय करना सही।

टाइम भी सफा वनी थोड़ो बचवाई प्रोग्राम जो मोहम्मद समान भाभी सने प्रोग्राम बुधन पया मोहम्मद हूँ प्यारी भाजी हूँ अच्छा मेहताब अली इंटर अभी हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम भा तमा की ईद मुबारक हुजे अच्छा किशोर तो मुखे तो जी आवाज का एनर्जी मिलन दो आज गर्मी में कोल्ड ड्रिंक न पियो हाँ वैसे मुझो यो हिकड़ो ख्याल हुंदो आ त प्रोग्राम जको ना एनर्जेटिक हुजन गुरजे बुधंदड़ यो न सोचे त बाबा छा आयो थकल चीजों घट वणंदी आ हजार भागे ते हम भी अच गए लास्ट लिंक में यदि आपको ईद मुबारक हो आपको भी ईद मुबारक हो प्यारा भा छापया कयो किते बिजी हुआ चाचा खालिद कहते हजार मुझो भी एड करे मिलन तो पो एड कदासी नहीं एड न कदम ये तो खोड़ पैसा मतलब मानू चवन असा जा भी मामा चाचा सब चवन पो उन जा भी एड क्या पो मिलया तो ना मिलंदा तो पो चवंदासी नूर सिंतनियो भाई भी आगे लिस्ट में क्या बात है और हेंजी ये चले आप लोगों के साथ जो है ना वो बड़ा मजा आ गया जी ईद का दूसरा दिन बहुत अच्छा गुजरी आप लोगों का भी हमारा भी बहुत अच्छा गुजर रहा है और आप जो है ना वो खुश रहे हमेशा और इसी के साथ साथ वरी इंशाल्लाह तमाम से जो मुलाकात आ मुझी वह सैटरडे वाले डी थी वाली है एक बजे का टे बजे थे तवहां असा सब गड हुंदा आयो इन प्यारे सोनी प्रोग्राम में सो तमाम भी सोना सोना थियो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो सोमोक्राणी नाही बाबू सिंह सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल एंड

0: जवाब सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर।
1: पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली खिते में अमन इस्तेहकाम अली ज़ामिन है। 28 जो में तकबीर थे सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो पैगाम। सदर आसिफ ज़रदारी 28 मई 1998 ते चागी के पहाड़न से कामयाब एतमी धमक कर सिट की खुदमुख्तारी ए दिफाई तवाज़ुन हासिल कयो। असा मुस्तकबिल के चैलेंजेस का आगाह आयो मोड़ने की सलाहियत रखूं था। ऑपरेशन बुनियाद महसूस में भी भारतीय इदारे जो मोटो जवाब दिनो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चवाए जम तकबीर पाकिस्तान की तारीख जो अजीम ए फैसला तो ढी है। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो नवाज शरीफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ए डॉक्टर सबर मुबारक के खिराज तहसीन पेश कया तो। अठावी यम तकबीर के हथियारबंद फौज के सरबराह जो कौम के वाधायूं। आईएसपीआर मुजिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम ने एयर चीफ ए नेवल चीफ कौम के वाधायूं डिन्यू। पाकिस्तान एटमी ताकत बनजी उभरियो। उन दिन से पाकिस्तान जो दखण एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाजुन बहाल थो। यह कामयाबी पाकिस्तानी कौम ए पाक फौज की कुर्बानी जो समर है। पाक फौज मुल्क की सलामती खुशहाली इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान की दिफाई स्ट्रेटेजिक सलाहियत मुकदस कौमी अमानत है।

अमेरिका हिकु भेरो ॿीहर जंगबंदीअ जी भञकड़ी कंदे ईरान मथां हवाई हमला करे छॾिया। आबनाए हरमुज़ भरिसां फ़ौजी ठाकनि खे निशानो बणाइण जी दावा। ईरान पारां बे जवाबी वार ख़िते में मौजूद हिकु अमेरिकी फ़ौजी अॾे खे निशानो बणाइण जी दावा। अमेरिकी इख़्तियारनि जो चवण आहे त हमलनि जो मक़सदु अमेरिकी फ़ौज आबनाए हरमुज़ वापारी जहाज़नि खे लाॻू ख़तरा ख़तम करणु हो। ईरान जे पासदारनि इंकलाब जो चवण आहे त बंदर अबाद भरिसां बमबारी जे जवाब में अमेरिकी फ़ौजी अॾे खे निशानो बणायो वियो। इन ई अॾे तां ईरान ते हमिलो कयो वियो हो। रूसी खाबी उदारे मौजूदु ईरान तेल सां भरियल अमेरिकी जहाज़ जी आबनाए हरमुज़ खां गुज़रण जी कोशिश बि नाकाम बणाए छॾी आहे।

नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त कोशिश कयूं पिया त बजट में आवाम ते घटि खां घटि हुकूमत महांगाई में घटाई जे लाइ मुसलसल कदम खणी रही आहे। सियासी जमातूं सिर्फ़ तनक़ीद बदिरां मुआशी इस्तेहकाम जे लाइ कम कनि। कवालिया में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त आलमी सतह ते पाकिस्तान जूं सफ़ारती कोशिशूं साराहियूं पियूं वञनि। ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी सां कणिक जी पैदावार में वाधि मुमकिन आहे, एक्सपोर्ट में बि वाधि थी सघे थी। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी मीना में सऊदी मनसब अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद सां मुलाक़ात। ॿिन्ही घर वज़ीरनि हिक ॿिए खे ईद जूं वाधायूं ॾिनियूं। गॾियल पधराई मूजिबि अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद घर वज़ीर मोहसिन नक़वी खे हज जूं वाधायूं ॾिनियूं। पा सऊदी अरब तरफ़ां लाॻापनि ऐं अंदरूनी सिक्योरिटी ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। पधराई मूजिबि एफ़सी स्पेशल डिप्लोमेट प्रोटेक्शन जा 200 अहलकार सऊदीअ में तरबियत हासिल कंदा। सऊदी वज़ीर पारां छिकतान घटाइण में पाकिस्तान जे हाकारी किरदार जी साराह। ईद जे ॿिए ॾिहाड़े ते बि सिंध में झेड़ा फायरिंग में मजरा क़तल, टे ज़ख़्मी। कोडी जी भरिसां ॻोठ मिठड़ फ़क़ीर कांधड़ो में कांधड़ा बिरादरी जी विंदड़ में झेड़े दौरान गोलियूं लॻण सबबि बरकत अली क़तल, संदसि वालिद अर्ज़ मोहम्मद समेत टे ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। शहदादपुर में लंदवाणी बिरादरी जी विंदड़ में झेड़े दौरान हिकु ॼणो ज़ोरखान लंदवाणी क़तल।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरों अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: 3:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। बारन, बुजुर्गन बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। वधीक पाणी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया के सारे गम सबको जाए भूल, चारों तरफ फैलाए खुशियों की।
1: ईद उल अज़हा की चटपटी ट्रांसमिशन,
2: मिर्च मसाला ईद।
3: हेल्दी ईद। राबिया अब्बास, क्लिनिकल डाइटिशियन फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। मैं आपको ईद उल अज़हा के बारे में

0: और सामिन बहुत अहम तलब एक मसला ये मैं सोचती हूँ कि आपसे शेयर करूँ, आज मौका भी है और रस्म भी है और दस्तूर भी है। अक्सर देखने में ये आया, पर्सनली एक चीज मैंने नोट की है कि कुर्बानी वाले दिन कसाई काम खत्म करने से पहले ही जब भी आपके घर में ज़िबाह करने के लिए आते हैं जानवर को, तो वो अपनी उजरत, अपनी जो पेमेंट होती है वो एडवांस में ही तय कर लेते हैं और उसके साथ ही साथ गोश्त का मुतालबा भी कर देते हैं। और बाज इलाकों में तो दीदा दलेरी यहां तक होती है कि गोश्त बनाने के दौरान ही अपनी पसंद का हिस्सा पहले ही साइड पर कर देते हैं कि भाई ये तो हमारा हिस्सा है। और इस बात की कोई तो नहीं बनती, मेरी पर्सनल थिंकिंग तो ये है, जब आप उन्हें पेमेंट कर रहे हैं उनके काम की तो आपने स्टार्ट में ही उनसे ये बात तय कर ली है, उन्हें ये क्लियर कर देना है कि काम मुकम्मल होते ही आपकी तयशुदा उजरत आपको फौरन अदा की जाएगी, मगर गोश्त पर उनका कोई भी हक नहीं है। ये लोग मुकम्मल तौर पर साहिब जानवर का हक है, ये जो गोश्त है वो खुद इस्तेमाल करें, अपने अजीजों अकारिब को दे या किसी गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दे। कसाई इनमें से किसी भी कैटेगरी में फाल नहीं करते, गोश्त बनाना उनका पेशा है जिसका मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए और वो सीजन भी ठीक ठाक लगाते हैं, खासकर बड़े शहरों में। ताहम गोश्त लूटना ये किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ, गोश्त कीमती है। अगर पहले ही बकरे का 6000 उन्होंने लिया है बकरा कट करने के, साथ में 2 किलो गोश्त भी ले गए तो समझिए 6000 और गए। तो जनाब गोश्त को ईजी ना लिया करें, सोच समझ कर जहां देना जरूरी है उसे वहां तक पूरी एहतियात से पहुंचाइए। याद रखिए ईद के दिन शॉपर उठाकर गलियों में घूमने वाले घर घर दस्तक देने वाले बच्चों की अक्सरियत पेशावर भिखारियों की होती है। गोश्त की दुरुस्त तकसीम ही कुर्बानी का असल हुस्न है। ये वो मेवा है जिसे बहुत से सफेद पोश लोग सारा साल नहीं चख पाते, इस दिन उन तक का इसका जायका जरूर पहुंचाए, यही आपकी अवलीन तरजीह और जिम्मेदारी होनी चाहिए। अभी यहाँ कुछ मासूम लोगों को कसाई पर बहुत ही तरस आता है, कहते कोई नहीं खैर दे देते उन्हें दे देना चाहिए। तो जनाब ये वही कसाई हैं जो सारा साल उनकी फैमिली और वो रज रज के जो है गोश्त खाते हैं और बहुत अच्छे वाले गोश्त के पीस खाते हैं। उनमें से कई तो आपको सारा साल यही पानी मिला, बीमार जानवरों का गोश्त खिलाते हैं मगर बेहतरीन किस्म का गोश्त खाते हैं। लिहाजा आप उनकी फिक्र छोड़ें, उनका सोचें जिन्हें साल भर ये पानी मिला गोश्त भी नसीब नहीं होता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि प्लीज कोशिश करें कि जो असली हकदार है उन तक पहुंचाएं। मैं कम से कम बहुत हर्ट होती हूं जब मैं देखती हूं जो असली। अच्छा कल के ही दिन का मैं आपसे शेयर करूं,
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ DFM 88 नेटवर्क ते।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: डालडा स्टैंड अप पाउच, इजी टू पोर, इजी टू स्टोर, जहां मामता वहां डालडा।
1: सन क्रॉप।

अमेरिका हिकु भेरो ॿीहर जंगबंदी जी भञकड़ी कंदे ईरान मथां हवाई हमला करे छॾिया। आबना हरमुज़ भरिसां फ़ौजी थाकनि खे निशानो बणाइण जी दावा। ईरान पारां बे जवाबी वार ख़िते में मौजूदु हिकु अमेरिकी फ़ौजी अॾे खे निशानो बणाइण जी दावा। अमेरिकी इख़्तियारनि जो चौराहत हमलनि जो मक़सदु अमेरिकी फ़ौज आबना हरमुज़ में वापारी जहाज़नि खे लाॻू ख़तरा ख़तम करण हो। ईरान जे पासदारनि इनकलाब जो चवण आहे त बंदर अब्बास भरिसां बमबारी जे जवाब में अमेरिकी फ़ौजी अॾे खे निशानो बणायो वियो। इन ई अॾे तां ईरान ते हमिलो कयो वियो हो। रूसी खाबू इदारे मूजिबि ईरान तेल सां भरियल अमेरिकी जहाज़ आबना हरमुज़ खां गुज़रण जी कोशिश बि नाकाम बणाए छॾी आहे।

ट्रंप जे दबाव में रहंदासीं, आप लाइ हर मुल्क जो कंट्रोल ईरान वटी रहंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जे सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी जो ट्रंप जी धमकीअ ते रद अमल, संदसि चवणु ईरान खे यूरेनियम रिसाव जो हक़ हासिल आहे, पाबंदियुनि में नरमी जो मुतालबो जाइज़ आहे। ईरानी क़ौमी सलामती काउंसिल जे नायब सेक्रेटरी अली बाकरी जो चवणु आहे त यूरेनियम ज़खीरनि जो मामिलो अमेरिका सां हलंदड़ ॻाल्हियुनि में शामिल न आहे। आबिरा हरमोज़ खोलण बाबति अञा ताईं अमेरिका सां इतफ़ाक़ न आहे थियो।

नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त कोशिश कयूं पिया त बजट में आवाम ते घटि खां घटि भार विझूं। हुकूमत महांगाई में घटाई जे लाइ मुसलसल कदम खणी रही आहे। सियासी जमातू सिर्फ़ तनक़ीद बदिरां मुआशी इस्तेहकाम जे लाइ कम कनि। कबालिया में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त आलमी सतह ते पाकिस्तान जूं सफ़ारती कोशिशूं साराहियूं पियूं वञनि। ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी सां कणक जी पैदावार में वाध मुमकिन आहे, एक्सपोर्ट में बि वाध थी सघे थी। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी मीना में सऊदी मनसब अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद सां मुलाक़ात। ॿिन्ही घर वज़ीरनि हिक ॿिए खे ईद जूं वाधायूं ॾिनियूं। गॾियल पधराई मूजिबि अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद घर वज़ीर मोहसिन नक़वी खे हज जूं वाधायूं ॾिनियूं। पाक सऊदी अरब तरफ़ां लाॻापनि ऐं अंदरूनी सिक्योरिटी ते ख़्यालनि जी ॾे वठि बि कई वई। पधराई मूजिबि एफ़ सी स्पेशल डिप्लोमेट प्रोटेक्शन जा 200 अहलकार सऊदीअ में तरबियत हासिल कंदा। सऊदी वज़ीर पारां छिकतान घटाइण में पाकिस्तान जे हाकारी किरदार जी साराह।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: शदीद गर्मीअ सबब शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
1: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 3135525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: शदीद गर्मीअ सबब शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अच्छा जी, फाइव फिगर्स आर नॉट इक्वल लिमिट। ओके, बहुत शुक्रिया आपका अदा प्यारा ली, आप शामिल प्रोग्राम हुए, थैंक यू सो मच, आपको इसकी ढेरों ढेर बेस्ट विशेस। और जनाब, जैसे मंजिल पे पहुंचने की जल्दी होती है ना, वो राह में जो पड़े हुए पत्थर होते हैं उन्हें नजरअंदाज करते हुए अपनी मंजिल की जानिब चलता है। अदा प्यार अली, आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप मंजिल पे पहुंचने चाहते हैं तो रास्ते में पड़े हुए जो पत्थर हैं उन्हें नजरअंदाज करके अपनी मंजिल की जानिब अपना सफर जारी रखें। मेरी तरह अक्सर कहती है गुल, माहौल तो वही है कुर्बानी वाला, नहीं गोश्त नहीं चाहिए, बस इतना देख देख कर दिल भर गया है, अभी तो ईदी दो ना, ईद का मजा दोबाला हो जाए। हैला अक्सा ये इतने सारे लिसनर्स हैं, सारे के सारे अगर ईदी का मुझे कहें, आप तो कई सालों से कह रही हैं, देखिए मुझ पे चारा ने असर नहीं हो रहा आपके इतने सालों से कहने वाले जो ईद की बात है, फिर सारे लिसनर कहेंगे सानू भी चाहिए, साढ़ा हा कहते रख, फिर मैं गरीब आरजे क्या करूंगी, ये बताए मुझे। या हजारों की तादाद में लिसनर थे, अक्षा कुछ थोड़ा सा मेरा ख्याल करो प्लीज ये बात यही दबाओ ईदी वाली गुल, मैं भी अच्छी कुकिंग कर सकती हूँ, आप कर सकती हो, मैं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरे हाथ का घर वाले खाए ना गुल तो कसम से मैं इतना नहीं खाती, जस्ट एक बिरयानी और मैक्रोनी है जो तीन चार बार खा लेती हूँ बस, और जब भी बनती है, और बाकी कोई चीज बने ना तो मैं पहले ही बोल देती हूँ चावल बना लेते ना, या फिर कुछ ये क्या बना लिया, ये हर घर में एक ऐसा बंदा या बंदी होती है जिसने ये वाली चावल जरूर बनानी होती है अक्सर और हमारे घर में मैं बचपन में बहुत सिलेक्टेड फूड खाया करती थी। अच्छा, फिर मेरी वालदा मोहतरमा का ये कहना है, वो सबको ये कहती हैं कि ये जो मेरी बड़ी बेटी है इसके खाने पीने की आदतें इतनी खराब थी, इसके लिए हमें बहुत कुछ बनाना पड़ता था, बाकी के बच्चों को जो है मैंने ये वाली आदतें डलने ही नहीं दी, मेरे बाकी के सारे बच्चे सब कुछ खाते हैं। तो अक्सर मैंने नसीहत कराई भी थी घर वालों को, जबकि अब मैं ये कहती हूँ कि हमें सब कुछ खाना चाहिए, सब रब की नेमते हैं, और अब मजे की बात यह है कि मैं सब कुछ खा लेती हूँ, अब मेरे नखरे खाने पीने में बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं सोशल मीडिया पे और दीगर वेबसाइट्स पे खाने की चीजों के मुतालिक सर्च करती हूँ, और ये जो है मेरी मालूमात में इजाफा होता है कि इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो अब मैंने जो है ना खाने पीने में नखरे करना बिल्कुल छोड़ दिए। आपसे भी ये कहूंगी, रब की नेमते हैं, तमाम तर नेमतों को जो है ना आपने अपनी जो है फूड में ऐड करना है, अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। गुड मोहम्मद तैयब थेबो से हबीबुल्ला थेबो, आपका शो वेरी नाइस है, आपको आपकी एफएम की आल टीम आल लिसनर्स को ईद मुबारक अदा, सेम टू यू, थैंक यू। और जनाब यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, तो जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद आप
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अमेरिका एक भेरो बीहर जंगबंदी की भजकड़ी कंदे ईरान मथा हवाई हमला कर छड़ा आपना हुर्मुज भरसा फौजी ताकन के निशानो बनाने की दावा ईरान पारा भी जवाबी वार खत्े में मौजूद एक अमरीकी फौजी अड्डे के निशानो बनाने की दावा अमरीकी इख्तियारों चवण है हमलों जो मकसद अमरीकी फौज ए अपना हुर्मुज व्यापारी जहाजन के लागू खतरा खत्म करण हो ईरानी पासदार इनकलाब जो चवण है बंदर अब्बास भरसा बमबारी के जवाब में अमरीकी फौजी अड्डे के निशानो बनाया वो इन ही अड्डे ईरान से हमलों किया वो हो रूसी खबरू इदारे मूजिब ईरान तेल से भरल अमरीकी जहाज के अपनाए हुर्मुज का गुजरण की कोशिश भी नाकाम बनाए छी है। ट्रंप के दबाव में न ईदस आपना हुर्मुज जो कंट्रोल ईरान वटी रहंदो ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी जो ट्रंप की धमकी से रद्द अमल संदस चवण है ईरान के यूरेनियम बचाव जो हक हासिल है पाबंदियों में नरमी जो मुतालबो जायज है। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकर जो चवण है यूरेनियम जखीरन जो मामलो अमरीका से हलंदड़ गाल में शामिल न है आपना हुर्मुज खोलण बाबत अ ती अमरीका से इतफाक न है जो नाणे वारे वजीर मोहम्मद औरंगजेब कोशिश क्यों पा बजट में अवाम से घट का घट बार विझू हुकूमत महंगाई में घटताई लाए मुसलसिल कदम खड़ी रही है सियासी जमायतू सिर्फ तनकीद बदरा मुआशी इस्तेकाम लाए कम कन कमालिया में मीडिया से गालाइंदे मोहम्मद औरंगजेब आलमी सतह से पाकिस्तान जो सिफारती कोशिशों सारायू पी वन जरिए शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से कड़क की पैदावार में वाद मुमकिन है एक्सपोर्ट में भी वाद थी रही है।

सदर आसिफ अली जरदारी नवाब शाह का मोरो जे लंजार हाउस पहुंची रो है। समूरन से मुकम्मल सदर की आमद के मौके से सिक्योरिटी भी सख्त कई वही। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण पारा योम तकबीर से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के भेटा पेश। शर्जील मेमण पैंजे बयान में चयो तो योम तकबीर पाकिस्तान की तारीख जो अजीम है तारीखी दी है। पाकिस्तान ने एटमी धमाका करे दिफाई सलाहियत के नाकाबले शिकस्त बनायो। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान की एटमी कुवत बनायो। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो तो तारीखी किरदार सदाई सुनहरी अखर में लिखो वो। शहीद रानी मुल्क के मजबूत बनाने वो मिशन अगते बधाईदे मिसाइल टेक्नोलॉजी डी।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: शदीद गर्मीअ सबब शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस

0: असां हिन नंबर ते राबतो कंदा।
1: 0331252578 6।
0: जी हाँ, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: इट्स 5:15 PM।
2: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिया जोशो, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
5: पहला वाला क्योंकि कुछ बच्चों ने फरमाइश की, उनकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। लेते हैं शो की पहली कॉल और कहते हैं अपने कॉलर को अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल हो गई ड्रॉप पर, कोई बात नहीं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
5: केरे दा सा सबनी सा गड
6: शिकारपुर खान बाबा जमालुद्दीन भाई।
5: जमालुद्दीन भाई साहब केड़ा हाल चाल है, ता जा खुशबा शीद मुबारक।
6: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है खैर मुबारक इंद मुबारक हो लखन मुबारक आज ताक।
5: थैंक यू सो मच जमालुद्दीन भाई साहब। ता बुधायो तो ईद जा पहरो डी की गुजरो, बियो डी की गुजरो ता जो।
6: हां पहरो डी माशाल्लाह है, पर गुजरो माने पूरा से पर हाने तमाम गर्मी आ तमाम
5: यार, गर्मी तो इलाही आला है कसम।
6: गर्मी रहो
5: जी अल्लाह साईं सभी खैर करे। यो बुधायो असा तक अली हैदर जो गानो बुधायण वाला आयो। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। कहीं जे ना करना चाहो जी खैर मुबारक जमालुद्दीन भाई साहब, पांजो खास ख्याल रखो, गर्मी का बचो, ईद के खूब एंजॉय करो
6: इंशाल्लाह।
5: थैंक यू। हमारे साथ है जनाब जमालुद्दीन भाई फ्रॉम शिकारपुर। कैस्पर डीजे गोस्ट हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम चाइना, और थैंक यू सो मच कैस्पर, यू आर वॉचिंग मी, यू आर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच अगेन एंड हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। और मुजम्मिल खोसो हमारे साथ हैं, सलामश पाक जानी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच मुजम्मिल खोसो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सिकंदर अली

0: थैंक यू अलाबख्श शाहरानी साहब। इजाज़ कहते हैं क्या हाल है नियाज़ी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआएं हमारे साथ मौजूद हैं। और जनाब हम आपके लिए शो लेकर आए हैं जबरदस्त सा, जो कि आप सुन रहे हैं ईद के पहले दिन भी आपने सुना ईद की धूम, ईद के सेकंड डे भी आप सुन रहे हैं ईद की धूम, और जनाब ईद के थर्ड डे भी आप सुनेंगे फ्राइडे के रोज ईद की धूम, क्योंकि हम तीनों दिन आपके साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल हुसैन सोलंगी कहते हैं सलाम भाईजान, ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू टू मुजम्मिल हुसैन सोलंगी भाई, आपका बहुत शुक्रिया हम हमें याद कर रहे हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम
1: साईं, केर असा सबनी सा खुश आयो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाईरन जी दुआओं आन मुके, तमा केर अदा?
1: मा से हबीब ला सोरन तो गला हतड़ी गा।
0: हबीब हतड़ी काओ?
1: जी जी साईं।
0: ओके हबीब भा छा गंदायो आई ईद जी खोर सारी मुबारकों?
1: साईं ता दे भी तई सर खोर सारी मुबारकों।
0: थैंक यू। ईद जदी हड़ा किया गुजरिया ता जा?
1: साईं भला गुजरा सफा।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मना खादो पी तो हले तो घुमण फिरण भी हले तो?
1: हाँ हाँ
0: जबरदस्त जबरदस्त। हबीब साहब यो बुधायो गानो बुधायण वारो आए कें के डेडिकेट कदाओ?
1: साईं मजा भाई भाई रंग जमील सोलंकी, जमील सोलंकी
0: जी,
1: मोहम्मद रफीक सोलंकी, गुलाम मेहर सोलंकी।
0: अच्छा
1: तेरे जमीर अहमद सोलंकी?
0: जमीर अहमद सोलंकी। ठीक ठीक ठीक ठीक। ईद जो एंजॉय कर गर्मी का बचो हबीब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ ही जनाब हबीब भाई, और हबीब भाई के बाद अब देखते हैं लाइन पर कौन है, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। जनाब गर्मी से बचे क्योंकि पारा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है और ये गर्मी लग सकती है, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि एहतियात ज्यादा बेहतर है। अल्लाह बख्श चाकरानी कहते हैं शफाक भाई कैसे हो, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच अल्लाह बख्श चाकरानी। वालेकुम अस्सलाम एंड आपको भी बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: केरदा सा सबनी सा गदो गद अली अली मोहम्मद
1: अलीवान
0: से
1: जी अब्दुल कदीर कुरेशी।
0: अब्दुल कदीर कुरेशी साहब लगता है गोश्त वो ज्यादा खा लिया आपने, आपके गले पर खराश आ गई है
1: बस।
0: अच्छा कुरेशी साहब आपको ईद मुबारक हो पहले तो।
1: खैर मुबारक आपको।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक ठाक। आप ही बताइए कि आपका ईद के दिन कैसे गुजरा, दूसरा दिन है आज?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा जबरदस्त, दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी है, कहीं पे दावत शावत खाने गए या घर पे ही सिर्फ खा रहे हैं अभी तक?
1: बस घर पे ही।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। ये बताइए कि आप किसी को डेडिकेशन करना चाहेंगे? मैं भी गाना चलाने जा रहा हूँ, जालिम नजरों से तुम ना देखो है मर जाऊंगा।
1: बिल्कुल अल्लाह आपको खुश रखे।
0: जी जी
1: डेडिकेट तो किसको करेंगे, शायद हमारा कोई दोस्त हो।
0: अच्छा मुझे ही कर दें
1: उसी के नाम।
0: अच्छा आपका कोई खुफिया दोस्त है?
1: कोई भी है जो जानता है हमारे को शायद सुन रहा है।
0: अच्छा सब सुन रहे हैं, उनको डेडिकेट कर रहे हैं
1: आप? उनको डेडिकेट कर रहा हूँ आपको भी।
0: जी जी जी जी अलीवान से आप हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छे तरीके से और भी ईद को गुजारिए, हमारे साथ रहिए और गर्मी से खुद को बचाइए यार आप।
1: अल्लाह आपको खुशियां दे, गर्मी से अपने आप को बचाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच कुरेशी साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अल्लाह हाफिज। हमारे साथ कुरेशी साहब थे जनाब, बहुत प्यारे से अलीवान से, और जनाब इनको भी गाना सुनवाते हैं। लेकिन रिजवान अली टावरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अशफाक नियाजी साहब मेरी तरफ से ईद उल अजहा दूसरा दिन आपको बहुत मुबारक हो। वफा इमरान के कजन हूं और अली हैदर टावरी का भाई हूं, नेम रिजवान अली टावरी। ओके जनाब रिजवान भाई आपका, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आप हमें देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त में जुनेजो कहते हैं अशफाक भाई आज हमको सॉन्ग सुनाओ जाहिद मंगसी का। ओके जनाब आई विल ट्राई, मैं देखता हूं कि जाहिद मंगसी का कौन सा गाना आपको सुनवा। अब्दुल्ला अब्दुल मलिक पठान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो हम आपके लिए प्ले करते हैं इस वक्त बहुत प्यारा सा गाना है जबरदस्त से बच्चों की फरमाइश पर जनाब। गाना है जालिम नजर से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। जारा खुशी सलार समेजो और कश्यप जारा के नाम है ये गाना, तो सुनिए और बहुत सारा एंजॉय कीजिए। अल्लाह बख्श चाकरानी हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच।

0: खुशियों, कुर्बानी और मोहब्बत का त्यौहार जीएस अखर एफएम 88 की जानिब से ईद उल अजहा मुबारक। दुआ है कि ये ईद आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए।
1: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खेल महासे और बेजान पन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो। 92 बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम।

0: इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप। व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप। व्हाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: बिस्मिल्लाह जरूर जरूर जरूर
1: ने दे दो आहे ने अन्या।

0: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जबरदस्त तव्हांजी आवाज़ तमामु घणी प्यारी आहे तव्हां असांखे नाज़ शरीफ़ ॿुधाई आहे इहो ॿुधायो मोरू वारनि जी ईद कीअं थी गुज़रे कंहिंजो
1: अॼु ॿुधाइजो त जेको आहे सो शायदि मास्टर मंज़ूर जी आवाज़ में कलाम आहे
0: जी जी
1: विछड़ी वियल बे दर्द खे सारे थी दिल मूंखे ॾींहुं राति रुआरे थी हे ख़ुदा हिन दिल जे बदिले ॿी दिल ॾे
0: अच्छा विछड़ी वियल जी यादि रुआरे थी
1: जी विछड़ी वियल बे विछड़ी वियल बे दर्द खे सारे थी
0: वाह वाह वाह
1: दिल मूंखे ॾींहुं राति रुआरे थी
0: अच्छा
1: असांजा दोस्त आहे
0: जी जी
1: साईं इमदाद शाह बुखारी साहब आर जी गुलाब खान बैंड साहब सर मंसूर साहब ऐं जवान मोहन बचल शमानी साहब हाफिज़ सावन ढिल साहब हाफिज़ ज्ञान मोहम्मद अब्दुल साहब जवान मोहन बचल शमानी साहब या जेके ॿुधंदा सभिनि खे मुंहिंजे तरफ़ां अस्सलामु अलैकुम ऐं ईद मुबारक
0: वाली
1: कलाम असांखे ज़रूरु ॿुधाइजो
0: जी जी जी बसि ईअं तव्हांजो कलाम हींअर मां लॻाए छॾियो आहे थोरी देरि बाद प्ले थो कयां अदा थैंक यू सो मच मोरू वारा भाउ हाफिज़ अब्दुल करीम साहब आई थिंक थैंक यू सो मच तव्हां असांखे कॉल की जनाब तव्हां जी फरमाइश असां बिल्कुल प्ले कंदासीं थोरी देरि में वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल अस्सलामु अलैकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी अदा ईद मुबारक केर असां सभिनी सां गॾु
2: आबाद ग्रुप खां सैयद इमदाद शाह बुखारी
0: आबाद ग्रुप खां सैयद दिलदार शाह बुखारी सैयद इमदाद शाह बुखारी साहब तव्हांखे खोड़ सारी ईद जी मुबारकूं हुजनि अदा
2: साईं तव्हांखे बि खोड़ सारी ईद जी मुबारकूं ऐं असां त ईद माशाल्लाह सेलिब्रेट सुठे नमूने सां कई आहे
0: ज़बरदस्त ज़बरदस्त मां घर में वेही करे सेलिब्रेट कई आहे मां दोस्तनि वटि बि कोन वियो आहियां हिकु दोस्त वटि बि कोन वियो आहियां मां ऐं अच्छा गर्मी इलाही पई आहे ॿाहिरि तव्हां ॾिसो त क़यामत लॻी पई आहे
2: सिर्फ़ मां क़यामत लॻी पई आहे
0: वाकई ऐं मां सिर्फ़ प्रोग्राम करण लाइ घरां हिते ईंदो आहियां वरी हितां सिधो भॼी वेंदो आहियां घर
2: कयो न
0: जी बस दुआ कयो त तव्हांजे भाई खे एतिरी शोहरत मिली वञे एॾा पैसा अची वञे त मां पखो साण करे
2: घुमां
0: माना हिकिड़ो माण्हू रखां पंहिंजे मथां
2: हा
0: अञा असांजी तनखा कोन आई आहे असां हुनखे बि तनखा ॾियूं ख़ैर इन में थैंक यू सो मच तव्हां मुंहिंजे करे एतिरो सोचियो आहे तव्हां मूंखे मुफ़ीद मशवरो ॾिनो आहे इनशाला ताला ज़रूरु कंदासीं ईअं अच्छा इहो ॿुधायो त जेको तव्हां मां हाणे गानो थो प्ले कयां मास्टर मंज़ूर जो कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो जी जी कहिड़ो गानो ही दिल तोखे ॾेई छॾी इहो गुनगुनाए ॿुधायो मूंखे थोरो गुनगुनाए ॿुधायो एॾो सुरीलो आहे एॾो सुरीलो आहे मूंखे मां तव्हांखे छा ॿुधायां थोरो गुनगुनाए ॿुधायो वाह वाह वाह वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त सिंह तव्हांखे ॿुधाइण जी पूरी कोशिशि था कयूं कंहिंजे नाले था करणु चाहियो जी जी इनशाला ठीकु आहे थैंक यू अदा पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो थैंक यू हमारे साथ बहुत प्यारे से कॉलर और जनाब बड़े अच्छे से मशवरे देते कि कोई बंदा रख लें और आपके ऊपर पंखा चलता रहे और आपके ऊपर पंखा चलाता रहे जिस तरह शूटिंग्स में होता है तो जनाब थैंक यू सो मच आप हमें इतना मतलब हमारा इतना ख्याल कर रहे हैं और हमें मशवरे दे रहे हैं और गर्मी है आप भी अपना ख्याल रखें रिजवान अहमद कहते हैं सर सॉन्ग तो नहीं सुनाया शमन मेरा अली कारी जनाब सुना लेंगे इतनी जल्दी का एक दो घंटे में आपके साथ हैं ले दें शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम अशफ़क़ जिलोरी खां ख़ालिक लाचारी ॻाल्हायो
0: ख़ालिक भाउ ईद जो ॿियो ॾींहुं तव्हांखे खोड़ सारो मुबारक हुजे
3: साईं अव्हांखे रिज़वान साहब खे मुबारकूं
0: थैंक यू सो मच ख़ालिक भाउ ॿियो ॾींहुं कीअं थो गुज़रे तव्हांजो ईद जो
3: साईं अलहमदुल्ला माशाला घुमंदे फिरंदे शहर में गोश्त खाईंदे मिठाइयूं खाईंदे माना इंजॉय इंजॉय आहे
0: माना इंजॉय इंजॉय अकेला अकेला इंजॉय थो कयो न मिठाई था खारायो न वरी गोश्त था खारायो छो भला आई एम जस्ट किडिंग यार मज़ाक थो कयां अलाह ताला तव्हांखे बख़्शे तव्हांखे नसीब करे तव्हां ईअं घुमंदा फिरंदा रहो ऐं ज़िंदगी जे हर लम्हे खे इंजॉय कंदा रहो ख़ालिक
3: भाउ
0: फर्स्ट क्लास ख़ालिक भाउ मूंखे इहो त ॿुधायो गर्मी कॾहिं घटि थींदी अलाह अलाह कयो घटि किथे आहे एॾो एॾो एॾो गर्मी पई आहे हवा हले थी पर सफ़ा गर्मी تو دعا کیو اللہ سائیں کہاں تو بادل اچن کوئی بارش تھے
4: جی
0: جی خالق بھا گانا تو بدایا ماسٹر منظور جو کہیں سے نالے تھا کرنا چاہو
4: سائیں عزیز سولنگی ہے عزیز دلوار ہے قربان لے خاص کے لیے علی رضا علی گاری ہے یار محمد سولنگی
0: ہے اوکے جناب ماں ہیر بس بریک آ بریک جے بعد گانا تو پلے کیا ٹھیک ہے تھا
4: تھینک
0: یو خالق بھا تھینک یو ہمارے ساتھ ہے جناب خالق بھائی فرام جھلوری اور جھلوری کے بعد ہم لیتے ہیں شو کی ایک اور کال بالکل نہیں لیتے لے لیں نہیں یار گانا پھر وہ ٹائم ہم ہو جائے گا تو ہم گانا چلا کے پھر کال لیں گے یا گانا اینڈ میں چلائیں گے بریک کے بعد ہم آتے ہیں آپ کے ساتھ اور پھر آپ کی کالز لیتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اور انجوائے کیجئے اس کمرشل بریک کو
5: قربانی صرف جانور کی نہیں جذبات اور خواہشات کی بھی ہوتی ہے عید الاضحیٰ کا پیغام ہے

0: जी जनो वेलकम बैक है खुदा हिन दिल जे बदले बी दिल डे तमाम घणो सुपर हिट सॉन्ग असां तांखे ॿुधायो से जनाब इन वक्त असां सभिनी सां गॾु मौजूद आहिनि गोठ पुराणा जंगूअ खां जेकोबाद खां वफ़ा अली गुल कटबार अवेस गुल अब्बास गुल कटबार अस्सलाम वालेकुम जनाब किथे सलाम चवंदा से सोनू खान मस्तोई खे वालेकुम असलाम थैंक यू सो मच पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो अदा गोठ पुराणा जंगूअ खान खां जेकोबाद खां वफ़ा अली गुल कटबार साहब तव्हांजे तमाम दोस्तनि खे असां सलाम पुॼाए छॾियासीं ऐं जनाब तव्हां सभु असां दोस्तनि सां गॾु आहियो त हाणे वठूं था जनाब शो जी नेक्स्ट कॉल ऐं पंहिंजे कॉलर खे चऊं था अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम इस्ताफ भाई।
0: हांजी ईद मुबारक।
1: ख़ैर मुबारक साईं, तव्हांखे बि ईद मुबारक हुजे।
0: थैंक यू सो मच। त किथां पिया ॻाल्हायो, केरु पिया ॻाल्हायो था?
1: अरे
0: वफ़ा अली गुल कटबार साहब, तव्हांजो मैसेज मां हींअर ई पढ़ियो, इहे न
1: बिल्कुलु।

0: अच्छा अच्छा अच्छा ब्याह ठीक ठाक मजे में ईद जो रियाड़ा कियां पे गुजरन
1: अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बेहतरीन सही तमाम सुठा लॻो
0: अच्छा जबरदस्त जबरदस्त तव्हां खे असांजो शो कीअं पियो लॻे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल असांखे यादि आहे तव्हां असांजा काफ़ी पुराणा लिसनर आहियो जा
1: बिल्कुल
0: हा ग्रेट ग्रेट ग्रेट थैंक यू सो मच अदा ॿिया ॿुधायो ईद जा ॾिणा कीअं था गुज़रनि
1: बिल्कुल ॾाढा सुठा साईं
0: हा माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त इहो ॿुधायो त कहिड़ो गानो ॿुधणु चाहियो था ठीकु आहे मां शमन मिराली प्ले कंदुमि छो त शमन जी फरमाइश बि इलाही अचे थी त कंहिंजे नाले था करणु चाहियो वालेकुम असलाम अदा पंहिंजे नंढनि खे प्यार ॾिजो ऐं ईद जो ॾिहाड़ा एंजॉय कयो गर्मी खे पाण खे गर्मी खां बचायो थैंक यू सो मच अदा जी जना हमारे साथ बहुत प्यारे से अली गुलकट बार साहब और इसके बाद हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे साथ मेरा बेटा है महमूद मुमताज का कोई सॉन्ग सुनाओ जनाब इनाम अली जमाली हमारे साथ मौजूद है इनाम अली जमाली अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपके बेटे महमूद को हम शमन अली मिराली का गाना डेडिकेट करते हैं थैंक यू सो मच आप हमारे साथ रहिएगा और यूं इंजॉय करते रहिएगा लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पर कौन है अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम
0: सलाम सबनी सा
1: गडो
0: भंगवार जब्बार भा केड़ा हाल चाल अथव ईद मुबारक
1: खैर मुबारक
0: कहिड़ी कहिड़ी तरह ईद गुज़रे थी तव्हांजो ॿियो ॾियारो माशाल्लाह माशाल्लाह भगवान साहब इहो ॿुधायो दावतूं शावतूं हलनि थियूं दावतूं शावतूं हलनि थियूं खाइण पीअण वाह वाह जबरदस्त आहे जबरदस्त आहे इहो ॿुधायो तव्हां जितां कॉल कई आहे हुतां जो मौसम कीअं आहे
1: मौसम सही आहे गर्मी बि आहे हवा बि आहे हले थी
0: अच्छा हवा बि आहे गर्मी बि आहे मिक्स मौसम आहे माना हा ठीकु आहे मां तव्हांखे शमन जो गानो थो ॿुधायां कंहिंजे नाले था करणु चाहियो था अच्छा मुनवर मलाई बिल्कुलु हलायां थो कंहिंजे नाले था करणु चाहियो जी जी जेका ॿुधनि था सभु जी जी
1: हिकिड़ो मुंहिंजो भाइटो अब्बास
0: हा हा
1: हिकिड़ो ॿियो भाइटो रियाज़
0: माशाल्लाह
1: भाइटो आहे
0: जी जी
1: मुंहिंजी भाइटो आहे रियाज़ रफ़ीक भाइटो आहे
0: सही सही सही तमामु भाइटनि खे तमामु भाइरनि खे तमामु लिसनर्स खे त असांजी तरफ़ां खोड़ सारा सलाम ईद मुबारकूं ठीक है थैंक यू सो मच भंगवार भाई थैंक यू हमारे साथ बहुत प्यारे से भंगवार भाई और जनाब ये भी दावतें खा रहे हैं आप भी दावतें खा रहे हैं लेकिन हमेशा अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और गर्मी से खुद को बचाएं लेते हैं एक अदद सॉन्ग ब्रेक या कॉल ले लें नहीं कॉल तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि हम ले पाएंगे क्योंकि टाइम की शॉर्टेज वॉर्टेज है और जनाब रिजवान कांवरी ने कहा था कि शमन का गाना सुना दें और हमारे एक दूसरे भाई ने भी कहा कि शमन का गाना सुना दें तो बिल्कुल जनाब हम आपको सुनवाते हैं बहुत प्यारा से गाना शमन अली मिराली की वॉइस में तो सुनिए और हमारे साथ रहिए गोठ पुराने झंगुआ खां जगह बात का वफा अली गुलकट बार की फरमाइश पर ये गाना सुनिए और हमारे साथ रहिए

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: गर्मी, खैरपुर में गर्मी पर 53 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, लाड़कणो ए मोरो में पारो 51 सेंटीग्रेड ताई पहुंची वियो। मौसमी आतकाते पारा हीटवेव जो अलर्ट जारी, सखर, लाड़कणो, दादू, नवाबशाह, मोहनजोदड़ो, शिकारपुर, जेकाबाद ए खैरपुर में पारो मामूल का 4 खां 6 डिग्री सेंटीग्रेड वधीक रहण जो इम्कान। थरपारकर, बदीन, हैदराबाद, मिरपुर खास ए जामशोरो में भी सख्त गर्मी जी लपेट में। सिंग सागर साड़ींदड़ गर्मी सबब माण्हू घरनि ताईं महदूद, मौसमियात खाते इदारनि खे अलर्ट रहण ऐं अॻुवाट हिफ़ाज़ती क़दम खणण जी हिदायत करे छॾी।

अमरीका अपना हुर्मुज़ भरिसां ईरान ते हवाई हमला कंदड़ अमरीका तेहरान मथां जंग बंदी जी भजकड़ी जो इल्ज़ाम लगाए छॾियो। अमरीकी अख़्तियारनि जो चवण आहे त ईरान जंग बंदी जी भजकड़ी कई। हमलनि जो मक़सदु अमरीकी फ़ौज ऐं अपना हुर्मुज़ वापारी जहाज़नि खे लाॻू ख़तरा ख़तम करण हो। ईरानी पासदारनि इनकलाब जो चवण आहे त बंदर अब्बास भरिसां बमबारी जे जवाब में अमरीकी फ़ौजी अॾे खे निशानो बणायो वियो। उन ई अॾे तां ईरान ते हमिलो कयो वियो हो। रूसी ख़बरू इदारे मूजिब ईरान तेल सां भरियल अमरीकी जहाज़ जे अपनाए हुर्मुज़ खां गुज़रण जी कोशिश बि नाकाम बणाए छॾी आहे।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने हुरमुस बारे मामले ते ओमान जे ईरान से वेझड़ाई ते ओमान के तबाह बर्बाद करने की धमकी दई छी। ईरान के परदेही तर्जुमान इस्पाल वकाई रत अमल जाहिर कर ट्रंप के गडियल कौमन के मेंबर मुल्क ओमान के तबाह करने की धमकी दियण गुंडागर्दी की खतरनाक निशानी है। बंदरबास इलाकन से हमला आलमी कानून ए गडियल कौमन के चार्टर की बजकड़ी है। गडियल कौमन की सलामती काउंसिल अमरीका के जवाब से करार दियण लाए जिम्मेवारी पूरी करे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई चयो आहे त अमरीका ऐं इसराइल फौजी शिकस्त विकण लाइ ईरानी कौम में वेझा पैदा करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। जंग वणण इक़्तिसादी दबाउ विझण ऐं सियासी प्रोपेगेंडा खां पोइ दुश्मन नवनि मनसूबनि ते अमल करे रहियो आहे।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
4: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
3: आवाज की डोर से बंधा हुआ
5: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
6: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
5: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

0: जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। तो अच्छे महबूब मुझे सेज के सिंगारे हो, क्या बात है। बहुत प्यारा सा गाना हमने आपके समाजों की नजर किया। आप सुन रहे हैं इस वक्त ईद की धूम विदर्श पाक न्याजी जी एफ एम जी एट नेटवर्क से आप ये शो सुनते हैं और जनाब हमारे साथ रहकर बड़े मजे से आप ये शो एंजॉय कर रहे हैं। ईद का दूसरा दिन है जनाब और ईद के दूसरे दिन की जनाब रौनकें चल रही हैं और इन रौनकों में यकीनी तौर पर आप लोग ईद बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बड़े मस्त तरीके से जनाब जबरदस्त तरीके से ईद की खुशियां एंजॉय करेंगे। लेते हैं शो की एक और कॉल। जनाब अपने कॉलर को कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब हमारे साथ हमारे कॉलर्स की आवाज नहीं आ रही, पर कोई बात नहीं है, आवाज भी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी पता नहीं क्या हो गया है, कॉल्स वॉल्स की आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। लगता है वो इरफान अली की बात ठीक है कि जनाब जो है गर्मी शर्मी लग गई है हमारे नंबर्स वगैरह को भी और मोबाइल्स वगैरह को भी, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और आप हमें कॉल कर सकते हैं 6:42 टाइम इज राइट नाउ। कुछ ही देर बची है जनाब हमारे शो को साइनिंग ऑफ होने के लिए और जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है जनाब वहां वहां तक के तमाम दोस्तों को हम कहना चाहते हैं कि आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ आके जनाब गपशप कीजिए। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
0: के रहता सा सबनी सा गर
1: भाजपा का वफा अब्दुल वहीद जतोई केटी शामिल हो ताल को दिलो सखरा।
0: वफा अब्दुल वहीद जतोई साहब के ईद जो भी होनी खोड़ सारी मुबारकों।
1: सही खैर खैर दिल से ईद मुबारक सजी टीम के
0: खैर खैर मुबारक। यो बुधायो था ईद जो बो दिहाड़ो तुझो किए तो गुजरे
1: साई लशपश लशपश असल में तो मैं थोड़ो मिसाल दिया।
0: जी जी
1: घुमी फिरी पर असो शो तो शो बुधी तो ईद ईद शो जन खंड में खीर
0: जबरदस्त माना मिठो मिठो।
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा तो केटी शाबिले वाला सब कड़े हालत में
1: सही बेहतरीन बाकी

0: कुछ गर्मी जा भी लहरा हली रहा न कलक वटी पर पो भी हवा आए कोसी थदी
1: हां कोसी कोसी आए थदी थदी आए कोन बा
0: हां पर पो भी हलेता थी
1: हलेता थी या ता है पर इन में भी अल्लाह साईं जो शुक्र आ ता या भी हले थी
0: हां जी बिल्कुल
1: यो बुधायो ता माने जको आए दोस्त फरमाइश कई त गानो बुधायो मुखे अहमद मुगल जो तू अचे ता ईद थे केंजे नाला ता करना चाहो
0: साईं अहमद मुगल तो बेहतर ने फनकारा उन जो वरी भाव रामान मुगल
1: जी जी
0: वो भी बेहतरीन हो पर बेहतरीन ईद हिसाब से बुधरे जो
1: हाँ
0: हाँ स्पेशली भा अशफाक तहे नाले
1: जी जी
0: तेखो बाद मुझे भाणी जो रफीक जो गोली मारमी उनके खोर सरा सलाम
1: वालेकुम असलम
0: ईद मुबारक
1: खैर
0: मुझे भाव जही रमन जतो उनके ईद मुबारक मुझे भाटो आयाज मन जतो
1: सही
0: ऐं भाई बाबर साहब खोर सरा सलाम बाकी जेके आल टाल ॿुधनि था वफ़ा अब्दुल वहीद जतो पर ईद मुबारक बाय बाय
1: बाय बाय थैंक यू हमारे साथ थे वफा वहीद और जना वफा वहीद हमारे साथ थे तो अब देखते हैं हमारे साथ अब नेक्स्ट हमारे कॉलर कौन है अस्सलाम वालेकुम खैर मुबारक मेरी प्यारी सी बहन कैसी हैं आप ठीक हैं फर्स्ट क्लास कैसी ईद की तैयारी हुई और कैसी ईद चल रही है
2: मजे
1: अच्छा तो क्या क्या घर से डिशेस बना के खाई आपने अम्मा को क्या बना के खिलाई अम्मा ने आपको क्या बना के खिलाई
2: दरअसल मैं गोश्त खाती नहीं तो बस ऐसे गुजारे करी बर्गर का
1: अच्छा मतलब घर में तो फिर बहुत सारा काम होता है ना खवातीन को बेचारी को बर्तन धोने पड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या इनका काम डबल ट्रिपल हो जाता
2: है वैसे मैं काम भी नहीं कर रही आप पूछो तुम्हें बता दूँ
1: अच्छा आप काम नहीं कर रही है घर के
2: दरअसल दो दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ
1: था मेरी तबीयत
2: ठीक नहीं है
1: कौन सी गाड़ी में अच्छा आप खुद ड्राइव कर रही थी
2: नहीं
1: अच्छा ड्राइवर ड्राइव कर रहे थे खुदा ना खासा जान वान तो बच गई सबकी और कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ
2: नहीं बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन नहीं
1: अल्लाह अकबर मुझे लगता है ड्राइवर ने आपके साथ कोई दुश्मनी निकाली है सीधा जाके ठोका है ऐसा ही है ना आप ड्राइवर को तंग बहुत करती होंगी
2: दादा के दोस्त थे बड़ी उम्र की थी
1: दादा नसीहत करके गए होंगे कि इसको जरूर इसका एक्सीडेंट करवाना इसने हमें बहुत तंग कर रखा है अच्छा अल्लाह ताला आपको सेहत दे और ऐसे एक्सीडेंट से तमाम लोगों को बचाए नागहानी आफात से बचाए आप हमेशा खुश रहें ये बताओ कि लोगों को क्या पैगाम देना चाहती हो ईद के हवाले से और गर्मी के हवाले से
2: हाँ गर्मी के हवाले से पैगाम है कि खाना काफी वक्त को एहतियात करना है तो गर्मी ज्यादा है और तबीयत खराब हो जाएगी
1: हाँ बिल्कुल और गोश्त फ्रीज करके मत रखना क्योंकि बहुत से घरों में गोश्त फ्रीज करके रखे जाते हैं दो दो महीने तक चलता है भाई किसी गरीब को दे दो तुम लोग
2: बस 3 दिन 2 दिन काफी ज्यादा नहीं
1: हाँ बिल्कुल बहन अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी सेहत दे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रखे और तमाम बलाओं से महफूज रखे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो आपके नसीब अच्छे करे
2: एक बात बताई आपने आज क्या खाया
1: मैंने आज क्या खाया मैंने आज पुलाव खाया था और नमकीन बोटी थोड़ी सी चले ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू अल्लाह हाफिज जी जनाब हमारे साथ ही बहुत प्यारी सी बहन और इनाम अली जमाली हमारे साथ मौजूद है जो कि इस वक्त हमें सुन रहे हैं इनाम जमाली उनके बेटे हैं महमूद जमाली जो कि हमें गौर से सुन रहे हैं थैंक यू सो मच इनाम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा लेते हैं शो की कमर्शियल ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपके साथ दोबारा से हाजिर खिदमत है
3: कुर्बानी के जज्बे के साथ ईद मनाएं सबको गले लगाएं बड़ी ईद की बड़ी मुबारक जीए सखर FM 88 की जानिब से

0: पचास मिल गया।
1: हाँ हाँ गोश्त गोश्त खा दो। नहीं आप डॉक्टर के ना वो मन इन पेट में गड़बड़ थी वही सही सही आ सही आइयो बुधा गर्मी का बचल आओ ना।
0: हाँ गर्मी का बचल हूँ।
1: हाँ गर्मी का पान के बचाओ यो बुधायो ते कथे घुम फिर व्याह कौन व्याह
0: कौन
1: व्याह
0: न
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो माना ई तो जो बो डी जो बस ये घर में तो गुजरे
0: जी जी
1: सही आ सही आ अदा इनाम जमाली ये बुधायो केड़ो गानो बुधन अहमद मुगल जो गानो मा बुधायो तो केंजे नाले करना चाहो
0: मुझे भाटो हसने नोंजे नाले
1: सिर्फ हसने जे नाले
0: जी जी
1: अच्छा ठीक ठीक ठीक हसनैन भी गला है तो हेलो हसनैन। हेलो हसनैन
2: ठीक हो?
1: ठीक ठाक आप सुनाओ हसनैन कैसे हो?
2: मैं भी ठीक हूँ।
1: ईद कैसे गुजर रही है आपकी?
2: गुड
1: गुड गुजर रही है। वाह वाह वाह वाह कहते घुमण फिर वे आयो घुमण फिर वे आयो
2: घर में
1: ओए घर में घूम तो कितना घूम आयो घर में पेट्रोल हाँ
2: कुर्बानी
1: अच्छा कुर्बानी कई तब छा क्यों तब उसे छा जी उसे वाड़ो क्यों तब सही सही सही तो पो तवा छा छा खादो आ वाड़े वाड़े दे गोश्त को ठाए करे
2: गोश्त खादा मुर्गी
1: है कुठो वाड़ो तब खादी मुर्गी तब छो भला हाँ
2: गोश्त ही खादो
1: अच्छा मुर्गी काटो वहां जी
2: मुर्गी रात
1: अच्छा सही है सही है। हसनैन तां के भी ईद मुबारक हुजन तमाम दोस्तन के भी ईद मुबारक हुजन ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज बिल्कुल हमारे साथ बहुत प्यारे से हसनैन खान जमाली और जनाब हमारे साथ थे इनाम जमाली और बड़े मसरूफ बंदे थे जनाब लेते जो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
1: कौन हमारे साथ जनाब? अब्दुल जवाब चना साहब तव्हांखे भली का चवनि था पंहिंजे शो में तव्हांखे ईद मुबारक बि हुजे
3: सर ख़ैर मुबारक तव्हांजी पूरी टीम खे सॼे 88 जे नेटवर्क खे ईद मुबारक
1: ख़ैर मुबारक अदा ख़ैर मुबारक इहो ॿुधायो ईद जा ॾियारा कीअं था गुज़रनि?
3: बसि शुक्र आहे सही था गुज़रनि पर गर्मी ॾाढी आहे
1: गर्मी ॾाढी आहे
3: गर्मी ॾाढी आहे
1: हालत आहे ॾींहं जो वाक़ई हालत आहे यार अलाह साईं बसि पंहिंजो करम करे ऐं पंहिंजो जेको आहे असांखे जेको आहे गर्मी खां बचाए सभिनी खां बचाए ॿुधायो अहमद मुगल जो गानो अथा प्ले कयां थो कंहिंजे नाले सां करणु चाहियो?
3: सर मोहम्मद अज़ीम चन्ना अब्दुल सत्तार चन्ना गुलाम मुस्तफ़ा चन्ना
1: जी जी
3: अदीम अहमद चन्ना पीर हसन कुर्बान बेपर
1: अच्छा
3: सर अली हसन बाबो
1: जी जी
3: कुंभन को अनवर सोलंगी
1: साहब ठीक ठीक अदा थैंक यू सो मच पांजो खास ख्याल रखा था थैंक यू। हमारे साथ बहुत प्यार से कॉलर्स है ना अब बिल्कुल टाइम शॉर्ट रह गया हम चाहते हैं कि जितना जितनी कॉल ले सकते हैं ले लें और गाना भी चला लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ईद मुबारक भाई जान। कौन बात कर रहे हैं कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: इनाम दीन माहर
1: फ्रॉम डेरकी। डेरकी वाले कैसे हैं जनाब?
4: जी बिल्कुल ठीक।
1: अच्छा जबरदस्त ईद कैसे गुजर रही है आपकी?
4: बहुत अच्छी जा रही है।
1: जबरदस्त जबरदस्त ये बताओ अहमद मुगल का गाना चला रहा हूँ किसके नाम करना चाहोगे?
4: जी मेरे अरबिला मार
1: जी जी
4: अयाज मार
1: जी अच्छा जी जी सही ठीक ठीक
4: और सब लोगों
1: ठीक है ना थैंक यू सो मच अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी जनाब आप शो को बांटने पाने का टाइम आन पहुंचा है शफाक नियाज़ी का शो ईद की धूम अपने अख्तिताम को पहुंचता है इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी कल तीसरे दिन शो में और मेरे बाद रुखसार आएंगे आपके साथ शो लेकर तो उनके शो को बहुत एंजॉय कीजिएगा और इंशाल्लाह कल तक के लिए शफाक नियाज़ी को दीजिएगा इजाजत। टेक केयर गुड बाय हैव अ नाइस डे वंस अगेन हैप्पी ईद और कल तक के लिए इजाजत हालांकि

0: अब आप सुनेंगे।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं FM DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: एलोवेरा
1: फैन व्हाइट H ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। व्हाइट H ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट H ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सुराज जनाब एक दफो बीहर अवां के चंदासी भलेकार जी मीरपुर खास एफएम 88 जे लाइव स्टूडियो मा लाइव प्रोग्राम अवां जे ला जारी मा तवां जो पेंजो प्रेजेंटर आरजे अमीर अवां सगे मौजूद आई जनाब तवां मैसेज भी करे सको ता तवां कॉल भी करे सको ता इनी नंबर ते 0313615688 ते जेकडे कॉल तवां जी नथी लगे त पे तवां मंजो मैसेज जरूर इंदो मैसेज जरूर कीजिएगा जनाब इसी नंबर पर और अपने होने का एहसास दिलाएं देखते हैं कि लाइन पर कौन है मौजूद अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अच्छा जनाब आवाज नहीं आ रही है पता नहीं लगा के ये कहीं जी हाँ बिल्कुल गोश्त खाने तो नहीं चले गए लगे सर या गोश्त की जो बोटी होगी वो जो है वो मुंह में रख के बात कर रहे होंगे हाँ नेक्स्ट देखते हैं कि कौन है अस्सलाम वालेकुम
1: खोड़ा
0: शहर का हाफिज अमीन कड़ा हाल खुश हो तबियत ठीक बिल्कुल बिल्कुल की ईद गुजरी भला तहां जी
1: तमाम गुजरी
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम तो आगे की लगे
1: तमाम
0: बेहतरीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह जुड़ू था वरी भी एक दफो बीहर ठीक है थैंक यू प्रोग्राम में शामिल थे मोहब्बतू खैर खैर थैंक यू थैंक यू खैर खैर मुबारक थैंक यू मोहब्बत लख लाइक प्रोग्राम में शामिल थे आयो

0: 0313-615-688. जी बिल्कुल, मसरूफियात तमाम घणी आहे, बहरहाल मसरूफियात मां टाइम कढी करे टाइम ॾियणो पवंदो। हिकु ॿ प्रोग्राम्स जेको आहे इनशाला तव्हांजे लाइ सुठा नवां खणी ईंदासीं पंहिंजे हिन चैनल ते। जी बिल्कुल, मीरपुर ख़ासि एफ़ एम 88 ते एंड जनाब 88 नेटवर्क ते। नेक्स्ट कॉलर जी तरफ़ हलूं था। अस्सलाम वालेकुम। इहो छा आहे? हलो, अब बिल्कुल ठीक ठाक सी केर असा गड लाइन ते प्रोग्राम में यार। यो जहाज किथां पे हले तवां वट?
1: हेलो,
0: मां चो तवां हेलीकॉप्टर आयो जा मथे? आवाज एडो पे आयो जी हेलीकॉप्टर जो आवाज हुजे। अच्छा, केर असा गड लाइन ते प्रोग्राम में? नौशरो फेरोज मां तव्हां ज्वाइन कयो आहे, तव्हांखे वेलकम चवंदासीं। भले कार चवंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में। अलाह जो शुक्र, तमामु बहितरीन, सुठी गुज़री तव्हां। असांजी बि ईद ऐं अव्हां जे लाइ बि दुआऊं आहिनि। इनशाला तव्हांजी सुठी ईद गुज़रंदी, सुभाणे वारो ॾींहुं बि इनशाला तव्हांजो सुठो गुज़रंदो। थैंक यू, थैंक यू प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ, मोहबतूं, अला हाफ़िज़। जी कहिड़ा कहिड़ा दोस्त? दोस्त कहिड़ा कहिड़ा
1: आहिनि?
0: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू प्रोग्राम में शामिल थियण लाइ, मोहबतुनि जे लाइ लख लाइक। अच्छा जनाब, हिकिड़ो तमामु बहितरीन ज़बरदस्त ट्रैक आहे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल रख, इन खां पोइ ख़बरूं आहिनि, ख़बरुनि खां हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां गॾु मौजूद। ऐं ठीकु आहे, ओके जी, थी वियो हिते। आहा साईं, साईं मुंहिंजा, साईं मुंहिंजा।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमेरिका ईरान विच में जंगबंदी में वाद जो माहिदो दलन ते रास्तो जाहिर कयो आहे। माहिदे जे घणे ॾींहं शिकन ते अगारे वारे ॾींहुं इतफ़ाक़ थी चुको हो। ॿिन्ही मुल्कनि जे आला क़यादत जी मंज़ूरी अञा बाक़ी आहे। 60 ॾींहनि वारे मुफ़ामती माहिदे में आपदा हरमुस मां जहाज़नि खे बिना रुकावट गुज़रण जी शिक शामिल हूंदी। ईरान 30 ॾींहनि अंदर आपदा हरमुस मां बारूदी सुरंगू हटाईंदो ऐं अमरीका ईरान जी सामूंडी नाकाबंदी ख़तम कंदो। मुफ़ामती यादाश्त ते सही जंग खां पोइ सभ खां वॾी कामयाबी हूंदी।

0: GFM88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: GFM 90.4।

DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।